ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून 2026 सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

और आइए अब आपको दे देते हैं जानकारी हमारे आकाशवाणी एफएम रेनबो चैनल से प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सत्यवचन। इसके ठीक बाद सुप्रभात लेकर आपके साथ होंगी नूपुर कुलश्रेष्ठ। 7:05 से लेकर 8 तक आपके साथ होंगे गौतम गौड़ और एक बार फिर से नूपुर, दिल्ली और आसपास की खबरें लेकर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। अगर आप रखते हैं रुचि पाश्चात्य संगीत में तो आपके लिए होंगे देवर्षि रावत आपके साथ 10:05 पर लेकर मैचलेस म्यूजिक आर, और 12:05 पर होगा कार्यक्रम प्लेट कूल।

1:05 पर आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम रहेगा मेरा वाला सॉन्ग और साथ होंगे आपके सृजन राजपूत जो लेकर आएंगी आपकी पसंद के गीत आपके लिए। 2 बजे कार्यक्रम आशियाना के अंतर्गत आज आपके लिए लेकर आएंगी अक्षय वट, एक जो कि एक एल्डर केयर है, उसके बारे में जानकारी लेकर साथ होंगी गीतिका उनियाल और इसके साथ ही साथ आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में

0: भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी रेनबो पर अब वक्त है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सत्य वचन का।
2: This program is sponsored by FR Media Academy.
3: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जब मुश्किलें हम पर आन पड़ती हैं और हमारा मन घबराने लगता है और हमको कुछ नहीं सूझता, तब एक मधुर आवाज धीरे से हमें सुनाई देती है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा रख। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर हम मनुष्यों से बेइंतहा मोहब्बत करता है और इसीलिए वो हमारी चिंता करता है और हमेशा उसको रहती है हमारी परवाह और हमारी प्रार्थनाओं का भी वो जवाब देता है।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि विश्वास करने पर ही हम ईश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते देख सकते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर होगा तो तुम ईश्वर के एक से बढ़कर एक आश्चर्य कर्म को, जो असंभव सा प्रतीत होता है, अपनी नजरों से संभव होता देख पाओगे।

जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जब हम हर बात के लिए अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों से निराशा के बादलों को हटाकर खुशियों की बारिश कर देते हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला और करुणामय है।

दोस्तों, परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में आगे बढ़ते रहिए और प्रभु की आशीषों से अपने जीवनों को भरते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको बता देते हैं हमारा वो नंबर, जिन पर आप हमें मैसेज या फोन करके प्रभु के प्रेम के बारे में और जान सकते हैं। आप हमें 9693644242, जी हाँ, 9693644242, और हमारा दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 7678438471, जी हाँ, 7678438471। आप इन नंबरों पर फोन या मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

मैंने कहीं पढ़ा था कि बारिश में तितलियां ठहर जाती हैं क्योंकि उनके पंख नाजुक होते हैं। जीवन के तूफानों में थोड़ा ठहर जाना हार नहीं है। बारिश जल्द ही थमेगी और तुम फिर उड़ोगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का सुप्रभात कार्यक्रम में। आकाशवाणी रेनबो का ये सफर है और इस सफर पर आपके साथ मुलाकात होती है और साथ में सफर करने का जो मजा है वो भी अलग है। तो माइक के इस पार मैं हूँ, दूसरी ओर आप हैं और ये साथ बिल्कुल आपके साथ बना हुआ है 7 बजे तक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुप्रभात। और आज की जो सुबह हुई है वो आपकी कितने बजे हुई है? मतलब अभी 6:30 बज रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि आप हर दिन 5 बजे उठ जाते हैं या फिर आप 7 बजे भी उठते हैं, 8 बजे भी उठते हैं, लेकिन हाँ, आपका एक वक्त है कि 5 बजे उठना ही है, या फिर आपका वक्त है कि आपको 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, और साथ ही साथ उठना है, उसके बाद आपको पानी पीना है या फिर आपको योग करना है, मेडिटेशन करना है, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपको जो भी करना है। और उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इतने लाइफ में पंक्चुअल होते हैं अपने टाइम को लेके कि वो खाना भी एक ही टाइम पे खाते हैं। और आप जानते हैं, जब आप खाना भी एक ही टाइम पे खाते हैं तो उसकी सेहत पर भी उसका बहुत ही सकारात्मक असर आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप वो हैं जो नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो फिर आप समझते होंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं। और ये बात भी मैंने आपसे इसलिए ही पूछी क्योंकि कुछ लोग हैं जो जानते हैं और समझते हैं कि अनुशासन की शक्ति क्या होती है। तो अनुशासन की शक्ति क्या होती है, और कुछ ऐसी शख्सियत रही हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनुशासन को अपनाकर एक आदर्श जीवन का परिचय दिया है। और आज उन शख्सियत की बात तो हम करेंगे ही, क्योंकि जब आप पावर ऑफ डिसिप्लिन इसको समझ जाते हैं, तब फिर कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आप उनमें हैं जो फॉलो करते हैं कि इतने बजे उठना है, उसके बाद सैर पर जाना है, और ये जो प्रकृति है उसमें उसका जो संगीत है उसका भी आनंद लेना है, ये जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं, और ये जो पत्तों की और जो थोड़ी सी हवा जब चल रही होती है, फिर जो आवाज़ आती है और जो हवा आपके चेहरे को स्पर्श करती है, अगर आप इन सब का आनंद लेते हुए डिसिप्लिन जो है लाइफ में उसको उसका पालन करते हैं, तो जीवन वाकई खूबसूरत है, और उस खूबसूरती को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आज कुछ बात करेंगे और उन शख्सियत की जीवन से जुड़े जो किस्से हैं उनके बारे में भी जानेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में। मैं हूँ आपके साथ नूपुर कुलश्रेष्ठ।

कोई बात है, क्या हुआ है? ये जो युवा होते हैं ना, उनमें बहुत एनर्जी होती है, और अपनी एनर्जी को आपको कहाँ लगाना है, कैसे चैनलाइज करना है, ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है और आप पर निर्भर करता है, और उससे ही आपका जो भविष्य है वो भी निर्धारित होता है। और अनुशासन की शक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो अनुशासन में शक्ति है, अगर वो आप अनुशासन अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो फिर आप क्या से क्या नहीं कर सकते। और उससे जुड़ी कुछ एक प्रसंग है, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो बात करते हैं और पहुँच जाते हैं जुलाई 1891 में, जब युवा मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके इंग्लैंड से बम्बई पहुँचे। तब उनकी मुलाकात जैन धर्म के महान चिंतक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व श्रीमद राजचंद्र रायचंद भाई से हुई। ये मुलाकात कह सकते हैं कि गांधी जी के जीवन में इस मुलाकात का भी काफ़ी गहरा असर पड़ा, और जो हमारी सोच है उसमें भी बदलाव आया, तो उनकी सोच में भी बदलाव आया। रायचंद भाई की असाधारण स्मरण शक्ति की चर्चा हर जगह थी, और इसको सुनकर गांधी जी को विश्वास नहीं हुआ, और कहते हैं और कहा गया है कि वह रायचंद भाई जो हैं वो शतावधानी थे, यानी उनकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता अद्भुत थी। वो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को सुनकर उसी क्रम में तुरंत दोहरा सकते थे। गांधी जी की उपस्थिति में इस बात पर चर्चा हुई और फिर उनकी एक परीक्षा ली गई, तो अनेक भाषाओं के शब्द सुनाए गए और रायचंद भाई ने बिना किसी गलती के सभी शब्द उसी क्रम में दोहरा दिए, और गांधी जी तंग रह गए। गांधी जी को आश्चर्य इस बात पर भी हुआ कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री के बिना भी वो इतने ज्ञानी, विवेकी और सम्मानित थे। अब गांधी जी ने समझा कि सच्चा ज्ञान उनको तब समझ आया कि केवल विद्यालयों और डिग्रियों से नहीं, साधना, अध्ययन, आत्मअनुशासन और जागरूकता से प्राप्त होता है। तो ये जो प्रसंग है वो हमें सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका जागृत और अनुशासित मन है। मन पर नियंत्रण है तो फिर हम सब हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। मन पर नियंत्रण ही हमें महानता की ओर ले जाता है। और ऐसे बहुत सारे आदर्श व्यक्तित्व हैं, शख्सियत है, जिन्होंने इसे अपने जीवन में अपनाया है और जीवन की मुश्किल दौर से निकलते हुए खुद को साबित किया है। और ये भी कह सकते हैं कि जो अपने लिए सोचा था, चाहा था, उसको पाया है। आप जुड़ रहे हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में, आप सुन रहे हैं सुप्रभात, और मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

और अनुशासन की शक्ति से जुड़ी एक और बात अगर मैं बोलूँ, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे किस्से हैं, कहानियाँ हैं उन शख्सियों से जुड़ी हुई जिन्होंने जीवन में डिसिप्लिन को अपनाया और जीत के सफर पर निकल पड़े। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का नियम जो था, जो अनुशासन था जीवन में, उससे हम सब परिचित हैं। किस तरह से सुबह वो 4 बजे उठते थे और आखिरी पल तक, आखिरी दिनों तक उनका यही रूटीन था, और उसके बाद उठना, उसके बाद पढ़ाई करना, और उसके बाद वो काम भी करते थे, अखबार बांटने का भी वो काम करते थे ताकि पढ़ाई का खर्च निकल सके। नियम था, चुनौतियां भी थीं, और ऐसा नहीं है कि जब आप अनुशासन अपना रहे हैं और आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। निराशा कभी कुछ हाथ लगती है। अब जैसे उनका सपना था पायलट बनने का, लेकिन नहीं बन पाया और काफ़ी टूट गए, लेकिन फिर साक्षात्कार में उन्होंने बताया था अपनी बात कि वो एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया उसके बाद वो ऋषिकेश गए और वहाँ पे स्वामी शिवानंद जी से मिले, और उसके बाद उनके मार्गदर्शन से कलाम जी को ये समझ आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई नए रास्ते भी खुलते हैं, और उसके बाद सफलता जो मिली है तो हम कह सकते हैं वो जो एक असफलता थी, उससे उनकी एक नई शुरुआत हुई और DRDO से वो जुड़े, और एक पायलट ना बन पाने का जो नुकसान है वो भारत के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि उसी के बाद अंतरिक्ष और मिसाइल विज्ञान में कदम उन्होंने रखा और वो मिसाइल मैन बने। तो इसलिए जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, आप अपना कर्म है ना, बस वो करते जाइए। डिसिप्लिन है लाइफ में, सब कुछ आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, निराशा भी आएगी, कभी भी गिरेंगे भी, लेकिन फिर उठेंगे और आगे बढ़ेंगे, और बस गिरे तो निराश ना हो। मतलब मैंने गलत कहा है, मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे ये नहीं कहना है कि निराशा भी आएगी, आप गिर सकते हैं, आप जैसा सोचते हैं कई बार ऐसा होता है कि वैसा नहीं होता है, लेकिन आपको निराश नहीं होना है उस सफ़र में, आगे बढ़ते जाना है बहुत ही खूबसूरती के साथ, क्योंकि जीवन का ये जो सफ़र है ना बहुत ही खूबसूरत है, और ये हम सब जानते हैं। पता नहीं क्या ऐसा मैं नया आपको बता रही होती हूँ, कुछ भी तो नहीं, बस हाँ हम भूल जाते हैं इतनी सारी जो चुनौतियाँ हैं उनका सामना करते हुए, भाग दौड़ है उनका सामना करते हुए, हम भूल जाते हैं कि एक बहुत ही सुंदर स्वस्थ शरीर आपको मिला है जिसका आपको सम्मान करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, और वो सुंदर है, मन ठीक है तो सब अच्छा है। तो बस अपने मन को अच्छा रखिए, और आपके मन को अच्छा रखने के लिए बहुत कोशिश हमारी भी रहती है कि आपको हम हर जो कार्यक्रम है उसमें कुछ नई जानकारी के साथ आपके साथ जुड़े, वो गाने आपको सुनवाएं जो कहीं ना कहीं आप सुनना चाहते हैं, आपके दिल को छुए। तो दिल से दिल तक इस सफर में कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में गौतम कौर, और उसके बाद एक उसके दूसरे सेगमेंट में फिर मैं आपसे जुड़ूंगी, आपकी होगी मुलाकात नूपुर के साथ, और उसके बाद दिल की तराने, गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, इसमें भी आपके साथ रहेंगे गौतम कौर, और उसके बाद मैचलेस म्यूजिक आर में आपके साथ होंगी देवाशी रावत, और उसके बाद बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुनेंगे सृजन राजपूत के साथ, प्लेट कूल में फिर एक बार आपके साथ होंगी देवाशी रावत, और उसके बाद कार्यक्रम रहेगा, जी हाँ, आप सुनेंगे मेरा वाला सॉन्ग, इसमें आपके साथ होंगी सृजन राजपूत, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आप सुनेंगे आशियाना, गीतिका उनियाल होंगी इस सफर में आपके साथ, सीमा सती के साथ आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर, और आज का विषय रहेगा स्पेशल ऑन ऑटिस्टिक प्राइड डे, उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और 4 से 5 बजे आप ये कार्यक्रम सुनेंगे, इसमें आपके साथ होंगी गीतिका उनियाल, सीमा सती एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगी प्रोग्राम सिटी लाइट्स में सिटी की खबरों के साथ, मैसेज मसाला मिक्स में आपके साथ होंगी गीतांजलि शर्मा, और उसके बाद आप सुनेंगे हिट्स एंड मेमोरीज, और इसमें आपके साथ होंगे शुभांकर, उसके बाद एक बार फिर म्यूजिक मस्ती में आपके साथ होंगी गीतांजलि शर्मा रात शाम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, ताहिर हसन आपके साथ जुड़ेंगे आपकी याद आती रही, और उसके बाद समय रहेगा ऑल दैट जैज का, और इसमें भी आपके साथ होंगे शुभांकर, और उसके बाद ताहिर हसन आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे रंगी महफिल में। तो आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में बस इतना ही, मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्द मिलूँगी, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाखड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देशभर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देशभर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल, कहा जाता है कि याद आना और याद करना ये अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया मिलने दोबारा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। दिल्ली एनसीआर लेकर आपका होस्ट, आपका दोस्त आपके साथ हाजिर है। और दिल से दिल तक का तो सफर है, अपने हैं तभी तो सपने हैं। गुड मॉर्निंग।

बिल्कुल कभी हार नहीं माननी चाहिए। जाकिर खान की वो लाइनें याद आ गई हैं कि हम भूख के पाले बच्चे हैं, एक रोज सब कुछ खाएंगे और घर से निकले हैं तो इतिहास रच कर ही जाएंगे। वेल, आज के दिन का क्या इतिहास है मैं आपको बता देता हूं। एनर्जी तो आप फील कर ही पा रहे होंगे, 18th of June और इंटरनेशनल पिकनिक डे। सेल्फी मैंने ले ली आज। सेल्फी लेने का बहुत शौक होगा ना, और पिकनिक पे जाने का भी शौक होगा। वैसे काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एन मौके पर प्लान को कैंसिल कर देते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। वेल, आज है दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। पिकनिक सिर्फ बाहर जाकर खाना खाने का नाम नहीं है, बल्कि यह परिवार, दोस्तों और अपनों के साथ खुशियां बांटने, प्रकृति के करीब जाने और तनाव से दूर कुछ यादगार पल बिताने का एक खूबसूरत अवसर है। और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों और खुद के लिए समय निकालना भूल ही जाते हैं। खुद का तो छोड़िए, अपनों के लिए तो समय निकालिए। और ऐसे में एक छोटी सी पिकनिक भी हमें ताजगी, नई ऊर्जा और अपनों के साथ अनमोल यादें दे सकती है। तो आज का दिन है, और मोबाइल और काम के दबाव को थोड़ा किनारे कर आप अपनों के साथ समय बिताए। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मजा को सजा में बदल देते हैं। एन मौके पर दोस्त कुछ ऐसे होंगे आपके प्लान को कैंसिल कर देते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, हमारे और करीब आइए। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, 102.6 FM, दिल से दिल तक। आरजे गौतम के साथ

मान लो तो मौज है, नहीं तो समस्या तो हर रोज है ना। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन लेकिन लेकिन आपको पसंद आता होगा छप्पन भोग, लेकिन मैं कहूंगा कि करते रहिए योग। अर्थात अगर हम बात करें तो सहज योग, सहज अर्थात जो स्वाभाविक हो। सहज योग एक ऐसी ध्यान पद्धति है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की शांति, संतुलन और आत्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानसिक शांति प्राप्त करना है ना, मतलब वो मेंटल पीस होना काफी जरूरी है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और मानसिक थकान आम बात हो गई है। ऐसे में नियमित सहज योग और ध्यान मन को शांत करने, कंसंट्रेशन लेवल को हाई करने के लिए और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक हो सकता है। योग से ही होगा, योगा से ही होगा, मैं तो कह रहा हूं। सुनते रहिए 102.6 FM, दिल से दिल तक। आरोग्य पथ पर चलने की कोशिश कीजिए और योग हर रोज। फिट रहना काफी जरूरी है।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जी हाँ दोस्तों, गांव के जीवन में तालाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों के आवास के रूप में काम करके जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अक्सर मछली पकड़ने के लिए तालाबों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तालाबों को पुनर्जीवन दें, इन्हें खत्म न होने दें। डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर 102.6 एफएम, दिल से दिल तक और साथ ही साथ निभाना, नहीं तो क्या कहेगा जमाना। वेल, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या ना, उनको अपना काम करने दो। आप थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो, बड़ी बड़ी टेंशन लाइफ में छोटी लगने लगेगी। बस साथ ही साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना।

कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम चाहे दिन चार रहें या ना रहें, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां आज भी आपको याद होगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आज हम नमन करते हैं, जिनका बलिदान भारतीय इतिहास में साहस और स्वाभिमान की अमर गाथा बन चुका है। रानी लक्ष्मीबाई ने केवल अपने राज्य की रक्षा नहीं की, बल्कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में महिलाओं के अदम्य साहस का भी परिचय दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मातृभूमि के सम्मान के लिए संघर्ष और त्याग सबसे बड़ा धर्म है। आइए इस बलिदान दिवस पर हम रानी लक्ष्मीबाई के साहस, देशभक्ति और आत्मसम्मान को नमन करते हैं। 102.6 FM, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

दोस्तों, इसी के साथ आज हम याद कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ अध्यक्ष रहे चक्रवर्ती विजय राघव आचार्य को। उनका जन्म 18 जून 1852 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें लायन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। देश की आजादी, स्वराज और राष्ट्रीय जागरण के लिए उनके योगदान को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आइए उनकी जयंती पर हम लोकतंत्र, राष्ट्र सेवा और जनहित के मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर। जाग जाइए, जागो मोहन प्यारे।

में हो कितने भी उफान, राह में आए कितने भी तूफान, और जिंदगी में हो कितनी भी थकान, लेकिन रुकना नहीं है, देखना है उसकी उड़ान को, तो जाओ और ऊंचा कर दो आसमान को, कि तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ। ये मकान अदृश्य है, चल रहा मनुष्य, अर्श श्वेत रक्त से लथपथ। उड़ान पूरी भरने के लिए तैयार हैं आप? गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

वेल, क्रिकेट में कटर, ब्रेड पे बटर और खुल जाता है रनों का शटर, ये तो हर एक क्रिकेट प्रेमी को पसंद है ही। एंड भारत ने दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया लखनऊ के इखाना स्टेडियम।

में भारतीय टीम 402 रन पर ऑल आउट हो गई और वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार, वैसे एक ही तो दिल है कितनी बार जीतोगे, किसी टीम ने 400 से ज्यादा रन बनाने के बाद अपने सभी विकेट गवाए। एंड शुभमन गिल 154 रन और ईशान किशन 125 रन ने इनके एक ही ओवर में अपने अपने शतक इन्होंने पूरे किए। श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, वे सबसे तेज 3000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। और तेज रनों की गुहार है, चढ़ता हुआ बुखार है, वेल बुखार यहां पर भी चल रहा है, वो है एंटरटेनमेंट का, दिल से दिल तक। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। तिरंगा नहीं है, सतरंगा है ये प्यार।

ये प्यार ही तो है, ये प्यार ही तो है, अनकंडीशनल लव जो हर रोज आपको हमसे होता है। और ये प्यार ही तो है जिसमें नहीं बढ़ता आपका बीपी और नहीं गायब होती हमारी डीपी। आजकल ये वाला प्यार ज्यादा हो गया है। वेल, पसंद आ रही होगी आपको ये जुबानी, लेकिन पीते रहिए पानी, जुग जुग जी और खूब सारा पानी पियो। हाइड्रेटेड रखना अपने आप को बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गर्मी के साथ तो डिशम डिशम कर ही रहे हैं हम, है ना। वेदर कभी बदलता है, प्यार नहीं बदलना चाहिए।

जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं मेल करता हूँ ना। मेल मेल खेलने का समय आ गया है यार, यही तो होता है यार ऑफिस लाइफ। वेल कोई बात नहीं, वेल मन तो मिल ही गए ना हमारे। वेल बॉस से भी थोड़ा सा आपका कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाए, यही दुआ है मेरी। लेकिन पता ही नहीं लगता है कि कब समय चला जाता है आपके साथ। वेल जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो इज साइनिंग आउट। मैं जाऊंगा तभी तो नूपुर आएंगी। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जारी रहेगा। एक मैं और एक आप। ये प्यार इसी तरीके से रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूस।

खुद से इश्क फरमाती हुई मुझे सारी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। जी हाँ, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। उम्र के किसी भी बढ़ाव में क्यों ना हो, आप खूबसूरत और अपने से इश्क फरमाती हुई आप बहुत अच्छी लगती हैं। अपना पूरा ख्याल रखती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और स्वागत कर रही हूँ मैं आपका गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। तो अच्छे तो होंगे ही आप, है ना? अच्छे रहना चाहिए, बस स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। तो कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। और ज़रूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स, और हमारे स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहें, बस यही दुआ रहती है। इसी दुआ के साथ स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

सफर पे तो आप निकल ही चुके हैं और मंजिल भी आपको मिलेगी और जीत भी आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस बात इतनी सी है कि जब सफर पर निकले हैं तो पूरी तैयारी के साथ निकले ना, और अभी भी तो एक सफर पर चल ही रहे हैं आप और तैयार है आज के सफर के लिए। जान चुके हैं कि मौसम का क्या है हाल और कौन से हैं वो रास्ते जहाँ पे आपको लगता है जानकारी रखनी चाहिए ना कि हाँ ट्रैफिक तो नहीं है। देख लें आजकल तो कितने सारे आपको हर सुविधा उपलब्ध है आपके मोबाइल पर, और हम भी तो हैं यहाँ पर जो आपको बताते हैं कि इस रास्ते को आप अवॉइड कर सकते हैं, अभी इस रास्ते पर मत जाइएगा जहाँ मिल सकता है ट्रैफिक है, और किन रास्तों पर आपको जाना है वो भी बिल्कुल बता देंगे। लेकिन हाँ वो डाइवर्जन होता है थोड़ा सा, लेकिन ये मंजिल तक तो आप पहुँच ही जाते हैं और मंजिल तक तो आप बिल्कुल पहुँचेंगे चाहे मौसम कैसा भी हो, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ जब आप निकलते हैं सफ़र में तो फिर सफ़र का आनंद आप पूरा लेते हैं। और ये भी जो सफ़र है आपका पूरा आनंद में रहे तो उसके लिए ज़रूरी है जान लेते हैं मौसम का क्या हाल रहने वाला है। अधिकतम तापमान रहेगा 39 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही साथ एक अच्छी सी बात ये भी है कि थोड़ी सी गर्मी से राहत आपको मिलेगी आने वाले 3 दिनों में, और गरज सकते हैं बादल, बिजली चमक सकती है और हल्की बारिश होने की संभावना है आने वाले 3 दिनों में। तो बिल्कुल जो अम्ब्रेला है ना आपके साथ, ये आपका साथी है अभी के वक्त जब आप बाहर निकले, चाहे धूप हो या छाव, इसका साथ हमेशा रहना चाहिए। स्पेशली धूप छाव में नहीं, वो धूप होती है और जो बारिश होती है ना, दोनों में काम आता है ये। आपको सन से जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उससे भी बचाता है और फिर सफ़र को आसान भी बनाता है। तो इस सफ़र में मैं जिस तरीके से दौड़ भाग कर रही हूँ ना, दौड़े जा रही हूँ, वो आपको इतना कुछ बताना है तो इतनी स्पीड पकड़ रखिए आप, बिल्कुल भी स्पीड में गाड़ी मत चलाइएगा, मेनटेन रखिएगा, फिर आपको पता है क्या होता है, देखा मैं भी आ गई ना। तो इसलिए समझदारी हर जगह जरूरी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर नूपुर के साथ।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ये है आकाशवाणी रेनबो, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ, और बिल्कुल ये साथ बिल्कुल आपके साथ बना हुआ है और बहुत सारी बातें सफर में आपके साथ हमें साझा करनी हैं, और जरूरी हैं वो बातें जो आपके कल्याण से जुड़ी हैं, जन कल्याण से जुड़ी हैं। और 18 से लेकर 20 जून तक दिल्ली में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और इस शिविर का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और इस शिविर में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की जो अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और साथ ही साथ आप उनसे कैसे लाभ उठा सकते हैं इस बारे में भी आप जान पाएंगे। तो कई तरह की जो सेवाएं हैं या फिर किसी भी तरह की आपको कोई समस्या है उसका समाधान आपको यहां मिलेगा, उनकी सेवाओं से जुड़ी जो जानकारी है वो आपको मिलेंगी। तो अगर आप प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, विधवा पुत्री विवाह सहायता, गृह कर, सोलर पावर, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान हेतु पौधा वितरण और पीएम उदय योजना, टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, जनधन खाता, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, पिंक कार्ड, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी। 42 ऐसी जगह हैं जहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, और आप जानकारी ले सकते हैं, जो स्थानीय पार्षद हैं, निगम कार्यालय बने हैं वहां से आप जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ पर इस शिविर का आपकी जगह पर, आपका जो जहाँ आप रहते हैं वहां पर सबसे पास में कहाँ जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो सेवा क्या है, सुविधा क्या है और उसका समाधान क्या है, अगर किसी तरह की समस्या है तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा।

अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, डेंटल लैब टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, इन फील्ड में आप जाना चाहते हैं, इन कोर्सेज को आप करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ने

सत्र 2026 के लिए जो आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th है और आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है, और जो आपकी आयु है वो 14 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही साथ 10वीं अगर आप पास हैं तो आप हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 12वीं पास है तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको www.nitcindia.com पर लॉगिन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन आप यहां पर जाकर कर सकते हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 जून 2026। और साथ ही साथ अगर आप देखना चाहते हैं और भी जानकारी लेना चाहते हैं कि कितनी सीट हैं, पाठ्यक्रम की शुल्क क्या है पाठ्यक्रम का, तो आप संस्थान की जो वेबसाइट है generalinfo.tab वहां जाकर देख सकते हैं इस वेबसाइट पर। और आवेदन करने के लिए आप www.nitcindia.com पर जा सकते हैं।

आप गाना गाएं, गुनगुनाएं, जो जी में आए वो करें, और आप स्वतंत्र हैं आपके विचारों को लेकर और अपनी सोच को लेकर, और साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी बातें की जाती हैं। हमेशा से ये एक ऐसा विषय रहा है जिस जो कि बहुत गंभीर हो जाता है जब हम देखते हैं कि किस तरीके के अपराध हो रहे हैं, और महिलाएँ जो देश की प्रगति में, विकास में अहम भूमिका निभाती हैं, निभाती आई हैं, और उनकी सुरक्षा का ख्याल तो हमें बिल्कुल ही रखना पड़ेगा। जानते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षित रहना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर बात कहें तो एक बहुत टाइम से ये चल रहा था कि महिलाओं, ख़ासतौर पर महिलाओं को समर्पित एक पुलिस, जी हाँ, पहला समर्पित महिला थाना जो है उसको शुरू करने की जो है बात चल रही थी, और आखिरकार वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। दिल्ली का पहला समर्पित महिला थाना जो कि सब्जी मंडी इलाके में है, और यहाँ पर कई सुविधाएं हैं, और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हम बात करें, ऑनलाइन अपराध है, कंप्यूटर संबंधी जितनी भी मामलों की समझ रखने वाले यहाँ पे प्रशिक्षित स्टाफ होंगे, और हाईटेक सुविधाओं से लैस होगी ये जगह है। बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, वेटिंग एरिया में भी अच्छी सुविधाएं हैं, और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर अगर कुछ भी इस तरह की कोई कंप्लेंट जाती है तो 24 घंटे के अंदर ही एक विशेष टीम बनाई गई है जो कि तुरंत कार्रवाई करेगी। और ये एक पहल जो की गई है महिलाओं को लेकर, उनसे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं और जो भी अपराध होते हैं उसके लिए इसकी शुरुआत की गई है, और जल्द ही उम्मीद है कि और भी जगहों पर इस तरह के हम समझ सकते हैं कि और भी जो महिला समर्पित महिला थाना जो ये बनाया गया है पहला, वो और भी जगह उसकी शुरुआत की जाएगी। तो ज़रूरी है एक सुरक्षित माहौल ताकि महिलाएँ जितना उनका हुनर है और बाहर निकल रही हैं तो वो सेफ रहें, किसी भी तरह की कोई चिंता ना हो। आप जुड़े हुए हमारे साथ इस सफर में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ नुपुर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम

यह है आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो के सफर में आप भी किस सफर पर निकल सकते हैं सफर के साथ साथ हम तो आपके साथ जुड़े रहते हैं हर वक्त आपके साथ होते हैं लेकिन ये भी तो बताना ज़रूरी है कि ये जो टाइम है ना 9 to 5 और उसके बाद अगर आप भी इस तरह के जॉब में हैं अच्छी बात है आप अपनी जॉब को पसंद करते हैं अपने काम को पसंद करते हैं इंसान को अपने काम को पसंद करना चाहिए या फिर वो काम करना चाहिए जो उसको अच्छा लगता है ताकि वो अच्छा महसूस करें और आप बहुत अच्छा महसूस करें और काम से हटकर दोस्तों के साथ या फिर खुद भी आप निकल सकते हैं एक और सफ़र पर और बहुत ही एक खूबसूरत से प्ले का आप आनंद ले सकते हैं। उस प्ले का नाम है स्टॉर्म और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस नाटक को पेश करने जा रहे हैं और इस नाटक को लिखा है मशहूर रूसी नाटककार अलेक्जेंडर ओस्ट्रोवस्की ने और इससे अमिताभ श्रीवास्तव ने हिंदी में रूपांतरित किया है और जाने माने रूसी थिएटर डायरेक्टर अलेक्जेंडर कुकलिन ने इसको निर्देशित किया है। तो आप इस नाटक में व्यक्ति की आकांक्षाओं सामाजिक रीति रिवाजों और नैतिक सुविधाओं के बीच के तनाव को इसमें दिखाया गया है आप जानेंगे इसके बारे में और ये जो नाटक है वो 17 से 21 जून तक शाम 6 बजे मंडे हाउस में स्थित NSD जो परिसर है उसमें जो सम्मुख ऑडिटोरियम है वहाँ पर आप देख सकते हैं तो ज़रूर पहुँचिएगा आप और शो से 2 घंटे पहले पहुँच जाइएगा ताकि आपको सीट कार्ड मिल सके और आप आराम से अपनी सीट पर बैठकर इस प्ले का आनंद ले सके और साथ ही आप आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, कृष्णा लीला एम्ब्रॉयडरी आर्ट की ओर से पेश किया जा रहा है मंजू कुमारी जी की एग्जीबिशन और ये जो एग्जीबिशन है वो कहाँ पर आयोजित की जा रही है इंडिया हैबिटेट सेंटर में ये आर्ट शो है इसका आयोजन किया जा रहा है कन्वेंशन सेंटर फोए लोधी रोड सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का समय है तो कला प्रेमियों के बीच में ये एग्जीबिशन होगी तो आप भी आनंद ले सकते हैं इस कला का एग्जीबिशन का साथ ही आप रंगमंच के जो रंग हैं उनका भी आनंद ले सकते हैं जो बिखरे हुए हैं समेट लीजिए आनंद लीजिए और साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे गौतम कौर और आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने उसके बाद मैचलेस म्यूजिक आर में आपके साथ होंगे देवर्षि रावत और उसके बाद बॉलीवुड की खबरों के साथ सृजन राजपूत आपके साथ जुड़ेंगी प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में और मैं नुपुरकुल श्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाजत। अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी सफर में। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

जनाब, जहां जहां जाओगे वहीं हमें पाओगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम आपकी खिदमत में हाजिर है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में मिठाई, हमसे नाराज होके कहां जाओगे भाई। दिल के तराने गाने, नए पुराने सुन रहे हैं आप, बैक टू बैक सुपर हिट सॉन्ग्स।

0: सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
0: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओ हो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
7: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
6: हाँ, सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
7: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
6: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
9: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
10: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
11: हे, डिड यू नो, ओवर द पास्ट 12 इयर्स अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
12: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
11: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
12: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
11: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
3: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
13: Aap sun rahe hain Dil Ke Tarane, gaane नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
14: Well, आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने। और कल मैंने भी एक मैसेज पढ़ा कि मैं इश्क में यारों कमाल कर बैठी, लिख के आई लव यू फॉरवर्ड टू ऑल कर बैठी। दिल्ली है दिल वालों की।

ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

दिल के गाने नए पुराने दिल के तराने आरजे गौतम के साथ ही और टाइम फॉर द ओल्ड क्लासिक सॉन्ग इंतजार रहता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घ

0: अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोराम पीपुल्स मूवमेंट और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति तथा 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर वार्ता पूरी करने का वादा शामिल है। इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: From the motion picture Dirty Dancing, that was Eric Carmen with his smash hit Hungry Eyes. There we go. Time right now for us to take a quick break. Don't go anywhere. We'll be right back after these messages. Don't go anywhere.
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: we go. That was You and I by Scorpions. And yes, we'll be right back after these messages. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले कल G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय

पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओमकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे से होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्री शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरूआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सत्य निष्ठा से धन प्राप्त होता है और निस्वार्थ सेवा से प्रसिद्धि मिलती है। निरंतर अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और कर्म से बुद्धिमत्ता आती है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत के सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के वीर नेतृत्व ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबार में लगभग सपाट कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स करीब 60 अंक गिरकर 77,096 पर और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 24,077 के आसपास कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। मैं हूं दिल्ली की चाशनी कुड़ी सृजन, लेकर आई हूं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल। जी हां, बॉलीवुड की ढेरों गॉसिप बातें और फिल्मों के रिव्यूज के साथ साथ आपके लिए मौका होगा आज बॉलीवुड सरताज बनने का। क्या क्या बात करेंगे तो एक नजर डाल लेते हैं। देखिये, काफी सारे ट्रेलर्स आउट हुए हैं, कुछ फिल्में बिल्कुल रिलीज को तैयार खड़ी हैं। धमाल 4, वेलकम टू द जंगल और वर्सेस करें तो मेरा फेवरेट सेगमेंट में वापस आऊंगा और भारत भाग्य विधाता की कमाई पर बात करेंगे। एक और फिल्म का भी जिक्र करूंगी, बंटवारा 1947, फर्स्ट लुक आउट हुआ है, क्या कहता है ये। अल्फा का ट्रेलर आउट हुआ है, कास्टिंग का पूरा पूरा जो है यहां पर नजर आता है कि कौन कौन फिल्म में नजर आने वाला है। दीपिका के हाथों से कई फिल्में छूटती नजर आ रही हैं, वहीं लगान और गदर जैसी बड़ी फिल्मों ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। कल कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है उस पर भी करेंगे बात, लेकिन इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा मेरे यानी सृजन के साथ दिल से दिल तक। तो चलिए आगाज करते हैं स्पीकर के साथ और स्पीकर को करते हैं लाउड की स्पीकर फट जाए।

0: कर फट जाए।
1: जी हाँ, यही तो टोटल धमाल है। और 1 2 3 4 यानी 4 धमाल, धमाल 4 आने वाली है। इसी पर बात करते हैं। ये गाना सुना आपने टोटल धमाल से अदिति सिंह और जॉनिता गांधी की आवाज में। तो चलिए अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा धमाल 4, ये तो कुछ ऐसी फिल्में हैं, चाहे वो गोलमाल हो, वेलकम हो, हेरा फेरी हो, जिसे देखते हुए हम सभी ने लगभग अपना बचपन बिताया है। और जब इनके सीक्वल्स आ रहे हैं तो हम इन्हें जमकर प्यार दे रहे हैं और इंतजार भी बना हुआ है। अब अजय देवगन धमाल 4 का चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट लेकर आ रहे हैं। पूरा वही यार, आपको हंसाना भी है, कॉमेडी भी है, और आपको नजर आने वाला है एडवेंचर। तो चलिए इस फिल्म के प्लॉट पर बात करते हैं, क्या प्लॉट इस बार नजर आ रहा है। तो काफी सारे नए किरदारों की भी एंट्री हुई है और कहानी कहीं ना कहीं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाले स्टाइल में ली गई है। मीन्स समुद्री डाकों के डाकू जो हैं उनके हाथ खजाने का नक्शा है, वो अब ये जो हमारी टीम है इसको चाहिए। और इसी आनन फानन में क्या होता है, आदि मानव की जोड़ी है और लल्लन नजर आ रहे हैं रितेश देशमुख, अजय देवगन, संजय मिश्रा और कई ऐसे चेहरे जो कि हंसाने के लिए जाने जाते हैं। ट्रेलर में कुछ कुछ समझ आ रहा है कि भाई खजाना कहाँ है, उसे कैसे ढूंढना है, कुछ गलतियां भी हो रही हैं। धमाल मस्ती, कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जिन्हें आप ट्रेलर में देखते ही गुदगुदाने लगते हैं। तो अब इंतजार तो ऐसे में बनता है। बता दूं फिल्म बहुत जल्दी आने वाली है बड़े पर्दे पर, 10 जुलाई को फिल्म जो है आ रही है। कॉमेडी सीन्स नजर आएंगे और कहानी तो है ही। कास्टिंग की भी बात करें तो रवि किशन, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, ईशा गुप्ता, विजय पाटकर जैसे कलाकार इस फिल्म में कास्टिंग में नजर आ रहे हैं, फर्स्ट लुक में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में कुछ जो खास गुदगुदाने वाले हैं वो गाने भी हैं। जी हाँ, गानों को देखते हुए भी आप हंसते हंसते अपने आप को रोक नहीं पाते। और शुरुआत कहाँ से होती है, वही अनाउंसमेंट, क्या आपने ये बटन दबा दिया? अरे ये तो नहीं दबाना था, समझ गए ना मेरा इशारा। चलिए अगली बात करनी है वेलकम, वेलकम टू दी जंगल की। और ये है रिक्रिएटेड सॉन्ग वेलकम टू दी जंगल से, बिल्कुल लेटेस्ट आप सभी के लिए। मेकर्स कहते हैं गाने में हमने ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं क्योंकि हम वही फ्लेवर बनाए रखना चाहते थे। उच्चा लंबा कर दे।

वेलकम टू दी जंगल एंड वेलकम टू दी प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। मैं हूं दिल्ली के चाशनी कुड़े सृजन आपके साथ। जी हां, अब इस फिल्म की भी बात करें तो ये हो रही है 26 जून को रिलीज। आप कहेंगे सृजन जो रिलीज पहले हो रही है उसके बाद क्यों नहीं करती हैं, बस उसकी बात भी करेंगे लेकिन आगे पीछे भी बात करने में कुछ अपना ही मजा है। क्या नाम, आते हैं फिल्म की कहानी पर। तो ये फिल्म जो है अक्षय कुमार जो है जय बख्शी जो यहाँ पर प्ले कर रहे हैं एक पुलिस अधिकारी का रोल, उनके आसपास घूमती है। अब वो जो है ना पकड़ने जा रहे हैं एक फेमस क्रिमिनल को, राज सोलंकी यानी उर्फ सुनील शेट्टी को। अब इसके बीच में, मिशन के बीच में जो कॉमेडी, जो खतरनाक मोड़ आ रहे हैं उन्हें देखकर आपको गुदगुदाने का पूरा इंतजाम किया गया है। कास्ट की बात करें तो अक्षय, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, अरशद वारसी, जैकलिन फर्नांडिस, परेश रावल, जॉनी लिवर, राजपाल यादव, कृष्ण अभिषेक, ये सभी वो, जी हाँ, जैसे कि बात धमाल चार की हुई थी वैसे ही कुछ कुछ वेलकम टू दी जंगल की भी है। क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं कॉमेडी एक्शन जो एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है ना, ये वाला जोनर जो है ना फेल नहीं हो रहा है। और इसमें अगर मल्टी स्टारर फिल्म हो यानी बहुत सारे किरदारों का तड़का लगा दिया जाए तो आपको बिल्कुल सिनेमा घरों तक लाने की तैयारी पक्की पक्की हो जाती है। और कुछ बातें करेंगे अभी आगे हम, और कल रिलीज फिल्म की भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए रेनबो

0: प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
4: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
3: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
4: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
3: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
7: बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। तो कल रिलीज फिल्म की भी अब बात करते हैं। तो यहाँ जो है ना, सिचुएशनशिप और कंफ्यूजन का कॉकटेल है, जहाँ शायद रश्मिका और कृति सैनन लेकर आ रहे हैं कॉकटेल 2। कल फिल्म रिलीज हो रही है और इस फिल्म की बात करें तो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा प्यार दोस्ती और जो अभी बिल्कुल रिसेंट में उलझे उलझे से कुछ रिश्ते हैं उन पर यह फिल्म आधारित है। शाहिद एज कुणाल, कृति एज एली, रश्मिका एज दिया, ठीक है। इस फिल्म में प्यार, कमिटमेंट और सिचुएशनशिप में ये तीनों फंस गए हैं। आप देखिए, पहले से कुणाल और दिया जो है एक साथ रह रहे हैं, वो काफी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वहीं एंट्री हो जाती है एली की। अब एली के आने से उनके रिश्ते

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।

में कुछ ड्रामा, कुछ उलझने सी आ जाती हैं, तो ये कहानी कुछ इस तरह से कॉकटेल हो जाती है। वही बिल्कुल जैसे कॉकटेल वन में आपको नजर आता है, कुछ कुछ वैसी ही। अब बात करते हैं इस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है। अरे एडवांस बुकिंग की कमाई, रिलीज तो फिल्म ने कल होना है 19 जून, यानी कल फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन अपने गानों और ट्रेलर के चलते ही अच्छी खासी चर्चा बटोर ली है फिल्म ने अभी से। एडवांस बुकिंग जो है फिल्म की 14 जून से स्टार्ट कर दी गई थी। अब इसकी जो अगर बात करें तो 57,000 सीटें जो है वो बिक चुकी हैं, तो दिस इज नॉट बैड, मतलब एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा इसे भी। और फिल्म की ब्लॉक सीट्स की बात करें तो वो कमाई देती है 1.97 करोड़ की, और वहीं टोटल अगर ब्लॉक सीट्स को भी मिला लिया जाए तो ये कमाई जो है 3.67 करोड़ की हो जाती है। तो नॉट बैड, मुझे लगता है ये एक अच्छी कमाई है, बट देखना तो ये दिलचस्प होगा ओपनिंग डे में फिल्म कितनी कमाई करती है। वहीं पर्दे पर इसके कंपटीशन में बनी हुई है मैं वापस आऊंगा, भारत भाग्य विधाता, हॉन्टेड 3D का तो सेकेंड वीकेंड ही चल रहा होगा, तो देखते हैं इस दौड़ में जब कॉकटेल 2 उतरेगी तो क्या कमाई लेकर आएगी। वेल मेकर्स को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि कॉकटेल 1 भी जो है पसंद आई थी, तो सीक्वल से एक उम्मीदें बंध जाती हैं कि जब सीक्वल आएगा तो वही सभी दर्शक जो हैं एक बार फिर देखने उतरेंगे। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज है गाना। जी हाँ, इस यहां भी एक कॉकटेल 1 के गाने को रिक्रिएट किया गया है, तो मैं फिलहाल आपको ओरिजिनल 1 सुना देती हूँ। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। और आप कस लीजिए आप कमर, क्योंकि गाने के बाद पहले तो वर्सेस करूंगी, मेरा फेवरेट सेगमेंट, कुछ उतरी हुई फिल्मों की कमाई की बात करेंगे और आपसे पूछूंगी फिर बॉलीवुड सरताज का सवाल। कहीं नहीं जाना है, मोबाइल को थाम लीजिए, व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए 9868107070 एंड यस हियर वी गो दिस सॉन्ग।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
10: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
9: क्या ये जांच उपलब्ध है?
11: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
12: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
11: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
12: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
13: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर ऐप, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई मीडियम से भी हमारे लिसनर्स हमसे कनेक्टेड हैं। प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स। जी हाँ, अब वर्सेस करते हैं मेरा फेवरेट सेगमेंट। 12 जून की बात करें तो दो फिल्में आई थी बड़े पर्दे पर, मैं वापस आऊंगा और भारत भाग्य विधाता। इन दोनों फिल्मों की बात करें तो मैं वापस आऊंगा 70 करोड़ में बनी और फिल्म की कहानी जो है बहुत खास नजर है आती है जितना कि हम ट्रेलर से समझ पाए हैं। यहाँ दिलजीत दोसांझ, नसरुद्दीन शाह, वेदांग रैना, शर्वरी जैसे कलाकार नजर आते हैं, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी कहानी होने के बावजूद कहीं ना कहीं फिल्म जो है अपना बजट नहीं निकाल पा रही है। जहाँ कमाई की बात करें तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कुछ 17 करोड़ 15 लाख के आसपास की हुई है, वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन जो ग्रॉस, मैं ग्रॉस की ही बात कर रही हूं, तो ये भी कुछ 11 करोड़ के आसपास से मटती सी नजर आ रही है। हालांकि फिल्म अभी भी कई पर्दों पर बनी हुई है, देखते हैं क्या फिल्म की कहानी एक बार फिर जो है बड़े पर्दे पर दर्शकों को लेकर आ पाती है। वहीं भारत भाग्य विधाता, ये फिल्म अपने आप में ऐसा लगता है काफी बड़े बजट, जो कि पता नहीं से दिया जाना चाहिए था या नहीं दिया जाना चाहिए था, कयासों की बात करें तो वो तो कुछ ऐसा ही मानते हैं। 45 करोड़ में फिल्म जो है वो बनी है, वहीं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो है फिल्म की 6 करोड़ के आसपास ही रही और इंडियन बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन वही 5.5 करोड़ के आसपास रही। फिल्म के सभी चेहरों को हमने ट्रेलर और टीजर में देखा, लेकिन देखना है कि जब इन दोनों ही फिल्मों की हम बात करते हैं काफी अच्छे बजट में बनी है, लेकिन कलेक्शन जो है कहीं ना कहीं फीका सा रह जाता है। लेकिन यहां बात करें तो हमारे पास बहुत से कलर्स हैं, रेनबो के साथ, रंगों के साथ साथ आपका रंग। जी हाँ, नॉन स्टॉप वो गाने जो आपको थिरकने पे कर देंगे मजबूर, और एक पर्सन तो आज जरूर खुश हो जाएगा क्योंकि वो बनेगा बॉलीवुड सरताज। बस इस गाने के बाद आपसे पूछूंगी वो सवाल।

सुन रहे हैं आप प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कड़ी सृजन। अब अपने मोबाइल को और अपने फ्रिक्वेंसी के और क्लोज आ जाइए, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली हूं बॉलीवुड सरताज का आज का सवाल। ध्यान से सुनिए, कॉकटेल फिल्म की हमने बात की, वन पार्ट की भी बात की, टू पार्ट की भी बात की। वन भी हम सभी ने देखी होगी और टू का तो इंतजार है, कल फिल्म रिलीज हो जाएगी। अब आपको मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब देना है, इस फिल्म को यानी कॉकटेल वन और टू को कौन डायरेक्ट कर रहा है, इसके डायरेक्टर और निर्देशक का नाम आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। मेरा नंबर है 9868107070070। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, कॉकटेल एक और दो के निर्देशक डायरेक्टर कौन है? सही जवाब अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ भेज दीजिए, कोई एक तो जरूर आज बॉलीवुड सरताज बनने के लिए तैयार है। चलिए अब हम अपनी अगली खबर पर आ जाते हैं। मैंने कहा था बंटवारा 1947 का फर्स्ट लुक, फर्स्ट पोस्टर्स आउट हुए हैं। फिल्म की बात करें तो निर्देशक यहां पर है राजकुमार संतोषी, जो कुछ ऐसी कहानियों को परोसने के लिए फेमस हैं, जो कि आपको फील होती हैं, जो कि आपको टच करती हैं, दिल के अंदर तक उतरने का प्रयास करती हैं। फिल्म की रिलीज डेट है 14 अगस्त। जी हाँ, ये हमारी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिल्म आएगी। फिल्म बंटवारा 1947 से सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, उनकी जोड़ी प्रीति जिंटा के साथ यहाँ नजर आ रही है। ये वो कहानी है जो हम सभी के दिलों पर काफ़ी गहराई से खोदी गई है। जी हाँ, विभाजन की बात, इंसानी दिलों पर खींची वो लकीरें जो कि कहीं ना कहीं झकझोर कर रख देती हैं, इस कहानी में नज़र आता है। ये वो फेमस ड्रामा है जिसे असगर वजाहत ने लिखा था, ये वो फेमस नाटक रहा है। जी हाँ, जिन लाहौर नहीं देखिया वो जमिया ही नहीं, इस कहानी को फिल्म में दिखाया जा रहा है। नाटक की कहानी एक बुजुर्ग पंजाबी हिंदू महिला की है, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद लाहौर का घर छोड़ने से इनकार कर देती है, और फिर जो होता है वह अंदर से झकझोर देता है। आप चाहे इस फिल्म को पढ़ें या फिर इसे पर्दे पर उतरते देखें, नाटक में उतरते देखें, आप अपने आंसुओं को रोक नहीं सकते। और यहाँ वो किरदार निभाती हैं शबाना आजमी। जी हाँ, एक रोलर कोस्टर राइड पर आपको लगेगा कि आप निकल जाते हैं, वो सभी इमोशंस कहीं ना कहीं आपके दिल में भी उतरने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट लुक आउट है। जी हाँ, हम सभी इंतज़ार में हैं कि कब ये वो फिल्में जिनका कि फैंस को रहता है इंतज़ार, वो आएंगी। लेकिन इंतज़ार तो मुझे भी है आज के बॉलीवुड सरताज का। वहीं कयासों की सुने और ऑफिशियल अनाउंसमेंट की ओर ध्यान दें तो अपनी 8 घंटों की शिफ्ट की डिमांड के चलते दीपिका के हाथों से कई फिल्में छूटती नजर आ रही हैं। मेकर्स कहते हैं कि दीपिका पादुकोण कल्कि पार्ट टू का अब पार्ट नहीं है। जी हाँ, एक और जो है, पहले ये भी सुनने में आ रहा था कि अब यहाँ पर शायद कल्कि का जो रोल है यहाँ पर वो आलिया भट्ट की झोली में गिर सकता है, लेकिन जब भी फाइनल होगा तभी हम बात करेंगे। वैसे सूत्र तो काफी कुछ कह जाते हैं ना।

बॉलीवुड सरताज बनना चाहते हैं तो जल्दी से दीजिए मेरे सवाल का सही जवाब। सवाल है, कॉकटेल 1 और 2 के डायरेक्टर कौन है? बस जल्दी से नाम आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, नो चीटिंग। चलिए एक हिंट दे देती हूँ यहाँ पर, ये जो डायरेक्टर हैं इन्होंने ही वो फेमस फिल्म हिंदी मीडियम भी डायरेक्ट की थी, जहाँ आपको एक बाप बेटी के रिश्ते को दिखाया गया, और आप इस फिल्म को भी जरूर याद करते होंगे इन्हीं डायरेक्टर के नाम से। सोचिए सोचिए कौन है ये।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
4: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
3: हाँ, सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
4: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
3: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
8: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
9: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
8: म्यूजिक मस्ती।
10: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
11: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
8: म्यूजिक मस्ती।
12: म्यूजिक मस्ती तो जारी रहती है हर प्रोग्राम में, हर नया फ्लेवर में। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की ये मैजिकल फ्रिक्वेंसी है। प्रोग्राम है बॉलीवुड

ट्रेल्स, मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी क्रिस रजन। तो यहाँ कुछ फिल्में जो हैं ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं और नए इतिहास रच देती हैं। जी हाँ, सिल्वर जुबली मना रही हैं अपनी गदर और लगान जैसी फिल्में। ये फिल्म 25 साल पहले 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में हुई थी। क्लैश के चलते भी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा कलेक्शन, एक इतिहास रचते हुए फिल्म, दोनों ही फिल्मों ने दर्शकों के दिल को छू लिया, दिल में उतर गई। जी हाँ, गदर फिल्म की बात करें तो अपने रिलीज के 2.5 दशक पूरे कर रही है, शानदार जश्न मना रही है, जिसमें सनी देओल, अमीश शाह और डायरेक्टर अनिल शर्मा पूरी टीम नजर आती है और सिल्वर जुबली का जश्न मनाती हुई नजर आती है। वहीं लगान की स्टार कास्ट भी 25 साल पूरे होने के मौके पर जो है खास रीयूनियन करती है, जिसकी काफी सारी पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पर भी नजर आ रही हैं। गदर की बात करें तो इस फिल्म का बजट लगभग 20 करोड़ था और फिल्म ने जो है वर्ल्ड वाइड 135 करोड़ की शानदार कलेक्शन की। लगान की भी बात करें तो ये फिल्म जो है 24-25 करोड़ में बनी थी और फिर 75 करोड़ का कारोबार करती है। आमिर खान की इस फिल्म को भी मील का पत्थर माना गया। तो दोनों ये फिल्में 25 साल पूरे करती हैं, हम भी बहुत खुश हैं, बधाई देते हैं और आप सभी को बधाई, क्योंकि आप मुझे लगता है बॉलीवुड सरताज के सही जवाब तक पहुंचने वाले हैं। हाँ, एक बार फिर सवाल सुन लीजिए। ये है कॉकटेल 1 और 2 के फिल्म के डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है?

वो फिल्में भी बाजी मार रही हैं जहां पर एक महिला प्रधान जो है एक्शन थ्रिलर फिल्म में एक लीड करती हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स की सातवीं कड़ी की, अल्फा की। जी हाँ, जहां पर भारत की पहली महिला प्रधान एक्शन थ्रिलर फिल्म को बनाया जा रहा है। निर्देशन कर रहे हैं शिव रवेल, आलिया भट्ट हैं यहाँ पर उस लीड में, सीता का जो रोल है वो प्ले कर रही हैं, शर्वरी बाघ हैं, बॉबी देओल यहाँ पर विलन है, अनिल कपूर है कर्नल विक्रांत कौल के रूप में, और ऋतिक रोशन का यहां पर कबीर एज अ कबीर एक कैमियो आपको नजर आने वाला है। तो जी कहानी कुछ ऐसे खतरनाक स्पाई मिशन की है, जासूसी सा मिशन आपको नजर आएगा। वहां पर जो है कहानी में एक छोटी बच्ची के किरदार में पहले आलिया भट्ट को दिखाते हैं, उसका नाम सीता रखते हैं, और फिर वो कैसे जो है ट्रेंड होती है और कैसे उस मिशन तक पहुंचती है, इसके लिए तो आपको इंतजार करना होगा। और फिल्म जो है सिनेमाघरों में 3 जुलाई को आ रही है।

0: जी हाँ, कुछ इंतजार तो खत्म हो चुके हैं। कौन बने हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार, स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दें।
1: थैंक यू सुजन।
0: जी
1: तो मेरा नाम तनय है, मैंने हिमांशी लिखा है क्योंकि वो मेरी वाइफ का नाम है। मेरा
0: जी
1: नाम तनय कुमार है और मेरी वाइफ का नाम हिमांशी सिंह है। तो मैं अक्सर जब भी अगर ऐसी कहीं पे लिखता हूँ तो उसके साथ ही लिखता हूँ।
0: जी
1: मैं दिल्ली में मयूर विहार फेजवन इलाके में रहता हूँ और मैं एक रिसर्चर हूँ पेशे से।
0: जी तनय, आप और हिमांशी आज के हमारे बॉलीवुड सरताज बनते हैं। दिल्ली से हमारे श्रोता हैं तनय। तनय, सबसे पहले आपसे सही जवाब जानते हैं। मैंने पूछा है सवाल, कॉकटेल 1 और 2 के डायरेक्टर कौन हैं, तो आप जवाब दीजिए।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ, तो वो होमी अफजानिया जी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही।
1: और
0: और आपसे जानना चाहेंगे, आपका और हमारा रिश्ता कैसा है, मीन्स आप FM कितना सुनते हैं, रेडियो कितना सुनते हैं, रेनबो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: मैम, एक्चुअली तो मैं ज्यादातर टाइम पे यही सुनता हूँ। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में
0: जी
1: सभी जानते हैं कि ये रेनबो या विविध भारती ये सुनता रहता है,
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: दोनों ऑल इंडिया रेडियो के ही हैं। और ज्यादातर मतलब इनफैक्ट बहुत पहले मुझे याद है कि मैं रेनबो पे मैं एक तरीके से सवाल जवाब करते रहता हूँ। बिंदु जी के ऊपर बहुत पहले एक प्रोग्राम था तो मैंने उसके भी मतलब काइंड ऑफ एस मैसेजेस किए थे। कभी कभी मेरी वाइफ जो है कहती है कि पता नहीं ये कौन से गाने सुन रहे हैं।
0: जी
1: इनफैक्ट हम ऑफिस के लिए रेडी भी हो रहे होते हैं तो रेनबो ही चल रहा होता है।
0: तने, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए, और आपकी जो फीलिंग्स हैं जो बड़ी ट्रू हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे एक ऐसे श्रोता से भी हमारी बात हो रही है। तने, आपसे चाहेंगे कि बस यूं ही हमारी दोस्ती बनी रहे। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।
1: थैंक
0: थैंक
1: यू
0: यू,
1: मैम।
0: थैंक यू, नमस्कार। जी हाँ, तो ये हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज, तनय और हिमांशी, जो कि हमारे श्रोता हैं नई दिल्ली से। नगाड़े और ढोल मैंने बैकग्राउंड में बजा दिए हैं, अब सुनिए और कुछ नाम जिन्होंने दिए हैं सही जवाब। योगेश हैं देहरादून से, सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन सोनीपत से जवाब भेज रहे हैं सही, और इरशाद अशरफी हैं राजस्थान से हमारे श्रोता। दुनी चंद चंडीगढ़ से लिखते हैं सही जवाब, और ये हैं दुनी चंद जी, इनका तो नाम ले लिया मैंने पे एक बार फिर। अपशा जी हैं बिजनौर यूपी से, कांट से मोहम्मद फुरकान साहब सही जवाब भेज रहे हैं। विजय कुमार नई दिल्ली से सही जवाब, दोस्त आपका भी मिल चुका है।

पंकज झारखंड से, नीतीश झारखंड से, और ये है पुष्पेंद्र जी मेरठ से, रवि जोशी मेरठ से, एक और सही जवाब महेंद्र जी का मिला है बिहार से, राजपुर बिहार से, बिहार से ही गौतम कुमार सही जवाब भेज रहे हैं, शिव मेरठ से लिखते हैं, और अर्चना मुखर्जी नगर से हमें सही जवाब भेज रही हैं, दानिश जी खतौली से लिखते हैं, और सुखलाल जी हैं सुखाल भाल

वाला है ये वेस्ट बंगाल से हमारे श्रोता, और मिसेस धरम भाटिया रोहतक से सही जवाब भेज रही हैं, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से सही जवाब लिखते हैं, आसिफ सैफी और साथ में एक और सही जवाब मोहम्मद इम्तियाज जी और सलमा बेगम का, विनीत कुमार बदायूं से भेजते हैं, निकिता पुणे से लिखती हैं सही जवाब, और तरुण जी लिखते हैं तरुण कोहली जी हैं मेरठ से, और इसके बाद सलीम जी भी मेरठ से लिख रहे हैं, कान्हा है मेरठ से हमारे श्रोता, मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हाट दर्शना बाजार बिहार से लिखते हैं सही जवाब, प्रवीण चौहान जी का भी जवाब हमें मिला है मध्य प्रदेश से। उमेश जी खयाला से भेजते हैं सही जवाब, और ये हुए वो सभी हमारे श्रोता जिन्होंने भेजा है सही जवाब और कार्यक्रम को पसंद किया। अगला प्रोग्राम आप बिल्कुल सुनिएगा हमारे साथ, मैं हूं सृजन दिल्ली की चाशनी कुड़ी और प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपरे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000

मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस

0: भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: Okie dokie, that was a beautiful track over there by Bob Marley featuring Funkstar Deluxe. Sun is shining. Time right now is 12:33 and we'll be right back after these messages. Don't go anywhere.
1: Hey, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है. स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है.
2: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.
1: हाँ, सही है. इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है. स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है.
2: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है.
1: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
4: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो.
5: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है.
4: क्या ये जांच उपलब्ध है?
6: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है. समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है.
7: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है.
6: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं. स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार.
7: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें.
8: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी.
9: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें. स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है.
10: हे, डिड यू नो ओवर द पास्ट 12 इयर्स अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इंडियाज डिफेंस सेक्टर हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन. फ्रॉम बूस्टिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिफेंस विद कॉन्फिडेंस.
11: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
10: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
11: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
10: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
3: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
12: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है. कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
13: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी.
12: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा.
13: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा

0: There we go. That was Dance Floor by none other than Madonna. Time right now is 12:46 p.m. this afternoon. And yes, we'll be right back after these messages. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com. कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी.
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट

0: पेमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: की हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800 11 7800

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपरे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि

पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026

प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्वकप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रिक्वेंसी से लाइव स्ट्रीमिंग न्यूज ऑन एआईआर ऐप के जरिए भी हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। एक बार फिर स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त दिल्ली की चाशनी कुरे सृजन का प्यार भरा नमस्कार। ये है प्रोग्राम आपका अपना पसंदीदा मेरा वाला सॉन्ग। जी हाँ, जिस प्रोग्राम में आप अपनी पसंद के गाने अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर नोट कीजिए, ये है 9860707098681070070। तो ठीक है, इस नंबर को आपने अब नोट कर लिया है, तो यहाँ अपनी पसंद का गाना हमें भेजिए मेरा वाला सॉन्ग कार्यक्रम के लिए, और बताइए कि क्यों सुनना चाहते हैं गाना। कोई खास बात है तो उसका भी जिक्र कीजिएगा। पहली रिक्वेस्ट मुझे मिल चुकी है होली चौक उत्तम नगर से हमारे श्रोता की। ये श्रोता परिवार है जयराम, सचिन, अमन, दीपान और ये खोरवाल परिवार है। लिखते हैं कि गाना ये सुनना चाहते हैं जिसका जिक्र इन्होंने किया है, ये है छोटे मियां बड़े मियां फिल्म से किस डिस्को में जाएं। तो बिल्कुल इसी तरह से अपनी पसंद का कोई भी गाना आप हमें भेज सकते हैं, और बहुत मुझे खुशी होगी यदि आप मुझे कोई रीजन भी बताते हैं कि क्यों आप ये गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं फिलहाल इस गाने को।

शुभ दोपहर दोस्त, आपको भी लिखते हैं। यहाँ रात्रि से बारिश हो रही है, ऐसे में चांदनी फिल्म का पर्वत से काली घटा टकराई ये गाना सुना दीजिए। अमरदीप हैं जलाकांडापुरम सेलम तमिलनाडु से हमारे श्रोता। तो लीजिए श्रोता दोस्त, आपकी पसंद का ये गाना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी FM रेनबो से। आप भी अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9 8 6 8 1 0 7 0 7 0 पर।

कार्यक्रम सुन रहे हैं आप मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और तब तक भेज दीजिए आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: गजब का स्वाद।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
8: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

रेनबो सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मेरा वाला सॉन्ग। इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है कविता ने, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से हमारी ये श्रोता है और कह रही है कि मौसम तो यहाँ भी बहुत सुहावना हो चला है। तो उदित नारायण की आवाज में आइए सुनते हैं इनकी पसंद का यह गाना फिल्म सिर्फ तुमसे। और साथ ही बिंदास बोलिए और जरूर बताइए कि आपको हमारे कार्यक्रम, हमारी प्रेजेंटेशन कैसी लगती है। इसके लिए जुड़े कार्यक्रम बिंदास बोल से और अपने मेल, अपने सभी फीडबैक्स हमें भेज दीजिए feedback@rainbow@gmail.com पर।

हमारे श्रोता भेजते हैं, सत श्री अकाल, मैं चाहता हूं कि आप एक प्यारा सा गाना प्ले कर दीजिए। ये प्रदीप सलूजा हैं दिल्ली से हमारे श्रोता, और साथ ही ये चाहते हैं संगीता प्रथम का भी नाम शामिल हो। जनकपुरी से लिखते हैं और गाना है फिल्म जब वी मेट से, तुम से ही, मोहित चौहान की आवाज़ में।

ये गाना आपने सुना जिसे कि प्रदीप जी ने संगीता को डेडिकेट किया है, दिल्ली से हमारे श्रोता की रिक्वेस्ट। आप भी अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग के लिए। लिखिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ लिख बताएं कि क्यों सुनना चाहते हैं गाना। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और एक बार फिर वापस आती हूँ अगले श्रोता की रिक्वेस्ट के साथ।

0: आए हाय,
1: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
4: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
3: हाँ सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
4: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
3: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
7: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
8: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
7: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
9: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
10: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
11: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
10: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
11: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
10: और विनर्स को क्या मिलेगा?
11: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज

0: 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

कार्यक्रम सुन रहे हैं आप मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। प्रोग्राम के लिए आप भी अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। मैं हूं दिल्ली के चाशनी कुरेश्रजन और इस गाने की रिक्वेस्ट भेजी है अनीता वर्मा ने। हमारी ये श्रोता प्रीतमपुरा दिल्ली से हमें सुन रही हैं।

आवाज है अलीशा चिनॉय की, और फिल्म, जी हाँ ये फिल्म है, आप सभी जानते हैं ना, बंटी और बबली।

अगले गाने पर बढ़ते हैं। कार्यक्रम है मेरा वाला सॉन्ग, आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हमारे कई श्रोता न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी हमसे जुड़े हैं। हितेंद्र हैं असम से हमारे श्रोता, और अगला गाना यही डेडिकेट करना चाहते हैं अपने मित्रों को। उनका नाम इन्होंने चाहा है कि शामिल हो। मिनल है, बाइकॉन, विक्रम, अमल, बिमल, रोमेश, विवेलिक, नारायण, शिवा, दुर्गेश, अंकित, तो इन सभी श्रोताओं के नाम हमारा अगला गाना फिल्म तेरे नाम से। आप भी अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

अगला गाना मैंने क्यों कर लिया है, ये है जैद और हुडा की पसंद का, जो कि गाजियाबाद से हमारे श्रोता हैं। पर श्रोता दोस्त, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ और उसके बाद आकर आपकी पसंद का गाना सुनते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, गांव के जीवन में तालाब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न जलीय पौधों और जानवरों के आवास के रूप में काम करके जैव विविधता का समर्थन करते हैं। ग्रामीण अक्सर मछली पकड़ने के लिए तालाबों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन की आपूर्ति और अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तालाबों को पुनर्जीवन दें, इन्हें खत्म न होने दें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से
1: मैं माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हमारे साथ जुड़ा है उत्तम नगर दिल्ली से श्रोता परिवार बोधराज कमला गीतिका भानु प्रकाश, ये सुनना चाहते हैं हिमेश रेशमिया की आवाज में फर्म रेडियो से गाना मन का रेडियो बजने दे जरा।

कार्यक्रम सुन रहे हैं आप मेरा वाला सॉन्ग दिल्ली की चाशनी कुरेश रजन के साथ। अगला गाना मैंने क्यों कर लिया है, इस आर का लास्ट रिक्वेस्ट सॉन्ग। ये डेडिकेट करते हैं पवन महातो जो कि बोकारो झारखंड से हमें सुन रहे हैं, अपनी प्यारी सी वाइफ को। घूंघट की आर से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में ये गाना सुनेंगे, फिल्म हम है राही प्यार के। अगले कार्यक्रमों के बारे में भी आप सभी को बताती चलूँ, 2 से 3 आप सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना अक्षय वट खास। हमारा आज का कार्यक्रम गीतिका उनियाल कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी रेडियो डॉक्टर, समय रहेगा 3 से 4 का। एक्सपर्ट शेफाली, डॉक्टर शेफाली और योगेश कुमार के साथ आप सुनेंगे विषय स्पेशल ऑन ऑटिस्टिक प्राइड डे। संदेश टू सोल्जर हमारा विशेष कार्यक्रम, आज के गेस्ट कर्नल KVS तवर होंगे जो कि VSM है, रिटायर्ड है। गीतिका इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी संदेश टू सोल्जर्स। सीमा लेकर आएंगी अगला प्रोग्राम सैटेलाइट्स और मैसेज मसाला मिक्स, सुनिएगा गीतांजलि शर्मा के साथ। अपना और अपनों का रखिए खास खास ख्याल और जुड़े रहिए रेनबो के साथ। दिल से दिल तक अपनी दोस्त रजन को दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कौनियाल और लेकर आई हूं आपके लिए आप ही का अपना प्रोग्राम आशियाना। उस वृक्ष की बात हम कर रहे हैं जो वृक्ष हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए, एक तो वो हमें निर्मल छाया देता है और उसकी जड़ों ने हमेशा हमें उठना सिखाया है सम्मान के साथ, और हमें सिखाया है कि कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन वो वृक्ष अब हमसे प्यार मांग रहा है, मोहब्बत मांग रहा है। हम बात कर रहे हैं अपने घर के बुजुर्गों की, जिनके बिना ये जीवन अधूरा अधूरा सा है। यकीन मानिए, जब तक घर में बुजुर्ग होते हैं तो चिड़ियों की तरह चहचहाते हैं बच्चे, और उस चहचहाट में शामिल हो जाती है हमारे घर के बुजुर्गों की आवाज। लेकिन एक उम्र के बाद वो ये चाहते हैं, या यूं कह लीजिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका खासा ख्याल रखें। हम कहते हैं कि जीवन के हर पड़ाव में हमारे पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या जरूर है। छोटे बच्चों से बात करेंगे तो ये यही कहेंगे कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत पढ़ाई है, बहुत पीयर प्रेशर है, दोस्तों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारी अपनी निजी जीवन में जहां हम अपना घर परिवार देख रहे हैं, नौकरी देख रहे हैं, अनेकों तरीके की परेशानियां हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि बुजुर्गों की भी परेशानी हो सकती है? आपको लगता है कि उन्हें क्या परेशानी, वो तो घर में ही बैठे हुए हैं, उन्हें कहीं जाना नहीं है, उन्हें कमाना नहीं है, आराम से घर बैठकर खाएं और आराम से जीवन व्यतीत करें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर उम्र में कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं, और कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग हमेशा लड़ते हैं। क्या है वो परेशानियां और कैसे उन्हें सुलझाएं, बात करेंगे आज इसी प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के FM।

वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल और प्रोग्राम चल रहा है आज अक्षय वट आशियाना के तहत। बृहस्पतिवार के दिन हम बात करते हैं अपने घर के बुजुर्गों के बारे में, क्योंकि उनका खासा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ जिम्मेदारियां ना कहकर नहीं आती, वो आपके दिल से निकलती हैं, क्योंकि उन जिम्मेदारियों के पीछे ना बहुत सारा प्यार छुपा हुआ होता है। उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं करता, लेकिन कहते हैं जब दिल से बात निकलती है तो दिल तलक जाती है। और जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, यानी कि अपने घर के बुजुर्गों से, तो उनके लिए हम वो सब कुछ करना चाहते हैं, या यूं कह लीजिए दुनिया जहान की खुशियाँ उनके लिए लाना चाहते हैं, जो किसी वक्त हमारे लिए बस अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, यानी कि अपने समय, अपना पैसा, जब जीवन के उस पड़ाव में थे जब चाहते तो खूब इंजॉय कर सकते थे, लेकिन उस वक्त अगर किसी के बारे में सोचा तो बस हमारे लिए, और अब आपसे ना वो बस इतना चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा समय, यानी कि अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा समय उन्हें दे दें। अब आप कहेंगे कि बुज़ुर्गों को क्या परेशानी है, आराम से घर पर हैं, उनको तो बाहर भी नहीं निकलना, कमाना भी नहीं है, जब जो चाहें फरमाइश कर सकते हैं। पर यकीन मानिए कि दुनिया के धन दौलत एक तरफ और आपका अपने माता पिता, घर के बुज़ुर्गों को समय देना एक तरफ। कहते हैं कि जब हम एक ऐसे मकाम, एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचते हैं ज़िंदगी के, वहाँ हमारे पास समस्या वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन सबसे बड़ी ये ज़रूर होती है कि अकेलापन हमें हमेशा घेरे रखता है और हमें लगता है कि हमें समय देने वाला कोई नहीं है। बच्चों

वो हमारी परवाह नहीं है। और जब ये महसूस होने लगता है तो मन में बहुत से ख्याल आते हैं, जब मन में ख्याल आते हैं तो एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ता है। एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ेगा तो सोचिए उसके साथ और भी कई शारीरिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी हमारे बुजुर्गों के जीवन में अकेलापन है, और जब आप भी उन्हें समय नहीं देते हैं तो उनका ये अकेलापन, उनकी ये परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए ना फ्रेंड, लें अपनी 24 घंटों में से कुछ घंटे, कुछ मिनट्स, सेकंड्स नहीं कहूँगी, सेकंड्स कुछ भी नहीं, जो प्यार, जो कर्तव्य उन्होंने हमारे लिए निभाए हैं ना, उनके आगे तो ये समय बहुत छोटा पड़ता है। पर कहते हैं कि जीवन जो है धीरे धीरे, मध्यम मध्यम, हौले हौले आगे बढ़ रहा है, जैसे कि ये प्रोग्राम बढ़ रहा है। तो आइए अपनों को ना कुछ समय दे दें और अपने लिए यादें संजो लें, क्योंकि बाद में ना आपके पास सिर्फ यादें रह जाएंगी जब आप इनके बारे में अपने घर के बच्चों से चर्चा करेंगे। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ?

0: वेलकम बैक. मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल. और यहां आपसे कर रही हूं बहुत सारी बातें कि कैसे कैसे आप अपने घर के बुजुर्गों का खासा ख्याल रख सकते हैं. और उनके ख्याल में सबसे पहले है उनसे बहुत सारी बातें करना. कहते हैं कि बातें करने से ना बहुत सारी समस्याओं का निदान हमें वैसे ही मिल जाता है, क्योंकि हमारे मन में जो चल रहा होता है हम वो दूसरों को कभी कभी नहीं बता पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं किसी के मन में क्या चल रहा है. ऐसे ही हम अपने घर के बुजुर्गों से अगर बात कर लेते हैं तो उनकी समस्याओं से हम अवगत हो जाते हैं. तो करेंगे और भी बातें आपके साथ. फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक और उसके बाद कुछ मीठे नगमे और कुछ मीठी मीठी बातें.
1: तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है. स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है.
2: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.
1: हाँ, सही है. इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है. स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है.
2: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है.
1: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है.
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
3: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो. और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं. तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PMsuryaghar.gov.in पर.
5: हर घर सूर्य घर.
6: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें. स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है.
1: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है. स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है.
2: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.
1: हाँ, सही है. इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है. स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है.
2: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है.
1: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है.
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त आशियाना, जहां हम घर के बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन इस पर बात कर रही हैं। और भी समस्याएं हो सकती हैं हमारे बुजुर्गों की, हो सकता है कि शारीरिक हों लेकिन आपके पास समय ना होने के कारण वो आप तक की बात नहीं पहुँचा पा रहे हों। इसीलिए ज़रूरी है कि हम नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को इस तरह से विभाजित करें कि हम उसमें से अपने घर के बुजुर्गों के लिए समय निकाल सकें और ये समय सिर्फ उनको सुनने के लिए हो, कुछ अपने कहने को भी हो, क्योंकि आज भी वो यही हमसे उम्मीद करते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी घटित हुआ पूरे दिन भर में तो आप

उनके साथ शेयर करें, क्योंकि वो अभी भी आपके माता पिता हैं और उनका ये हक बनता है कि वो जाने कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप तो अपने काम से बाहर निकल जाते हैं घर के, पर यकीन मानिए वो घर में बैठे बैठे बस यही सोचकर चिंतित होते रहते हैं कि ना जाने आज मेरे बच्चे के साथ बाहर क्या हुआ होगा, उसने खाना खाया होगा या ना खाया होगा। तो ये सब तमाम बातें जब अपने बुजुर्गों के साथ आप शेयर करते हैं तो उनका गुमसुम सा चेहरा फिर से खिल उठता है और उनको लगता है कि आज भी ना आप उनके श्रवण कुमार हैं और हमेशा उनके श्रवण कुमार बन के रहिए, उनसे बस बातें करते रहिए।

0: right here at home.
1: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
0: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
1: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
2: Para Sal Vishwas ke, Vikas ke, Jan Kalyan ke.
3: Talent to hai. पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
6: www.dellytalenthunt.com. कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
7: बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो.
8: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है.
7: क्या ये जांच उपलब्ध है?
9: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है. समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है.
10: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है.
9: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं. स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार.
10: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें.
11: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी.
1: हे, डिड यू नो, ओवर द पास्ट 12 इयर्स अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इंडियाज डिफेंस सेक्टर हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन. फ्रॉम बूस्टिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिफेंस विद कॉन्फिडेंस.
0: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
1: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
0: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
1: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
2: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
12: वेलकम बैक. मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा आरोग्य पथ पर अग्रणी रहें. हम मनाने जा रहे हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और उसके चलते हम आकाशवाणी के माध्यम से चाहते हैं कि आप योग को अपने जीवन में शामिल करें. तो योग को जीवन में शामिल करने के लिए हमें आसनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, और इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वक्रासन के बारे में. वक्रासन एक प्रारंभिक स्तर का बैठकर किया जाने वाला योगासन है. संस्कृत में वक्र का अर्थ होता है मुड़ा हुआ या टेढ़ा. इस मुद्रा में रीढ़ की हड्डी को मोड़ा जाता है, जिससे ये रीढ़ के लचीलेपन को सुधारने और

इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वक्रासन के बारे में। वक्रासन एक प्रारंभिक स्तर का बैठकर किया जाने वाला योगासन है। संस्कृत में वक्र का अर्थ होता है मुड़ा हुआ या टेढ़ा। इस मुद्रा में रीढ़ की हड्डी को मोड़ा जाता है, जिससे ये रीढ़ के लचीलेपन को सुधारने और पेट के अंगों को उत्तेजित करने के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। अब वक्रासन कैसे करना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। पैरों को सामने की

को पीठ के पीछे जमीन पर रखें, गर्दन को दाईं ओर घुमाएं और पीछे की ओर देखें। स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते हुए 20 से 30 सेकंड तक रुकें। सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। इसी प्रक्रिया को बाएं पैर से भी दोहराएं। इससे फायदे ये होते हैं कि एक तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है इसमें लचीलापन आता है, इसमें सुधार आता है। कई लोगों को पीठ दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, तो अगर वो वक्रासन करते हैं तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ पाचन तंत्र के लिए, यानी कि पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि उसे मजबूती देने के लिए, खासतौर पर पेट की जब बात की जाती है तो हम कहते हैं कि अगर आपका आपकी पाचन क्रिया बेहतर है तो आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो अगर आप वक्रासन करते हैं तो आपकी आपका पाचन तंत्र जो है वो मजबूत हो जाता है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो वज़न पर नियंत्रण पाना चाहते हैं उनके लिए भी ये आसन कारगर साबित हो सकता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका वज़न घटे, साथ ही साथ आप अगर कमर के दर्द से निजात पाना चाहते हैं, खास तौर पर अगर रीढ़ की हड्डी में आपके दर्द है, तो आप वक्र आसन को अपने जीवन में शामिल कर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, और यही हमारी कामना है, यही हमारी चाहत भी है। तो आगे बढ़ते हैं और इसी सिलसिले में अब आपसे साझा करना चाहेंगे कि आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है ये प्रायोजित कार्यक्रम। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे।

0: शब्दांग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: और जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोता, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा

0: होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? ना बड़ा दिलचस्प नाम। तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है।

उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर

0: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
2: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
0: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
0: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने,

0: सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
1: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और

0: सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
0: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
0: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना

0: उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला कर

ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बाहर के

0: करेंगे। वहां घोंसले में तेरी मां है, पर मां क्या है? इस बाहर के सामने तेरी मां क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो।
0: हाँ।
1: रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
1: माँ
2: ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
4: क्या है बच्चे?

0: क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
1: ना। ऊपर बच्चे कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग।

0: श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।

0: है। और जैसे हमारी पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, हर एक में लक्षण अलग अलग होते हैं, और हर एक हमें भी बताना है कि ये पहले एक जमाने में होता था कि नॉर्मल अब नॉर्मल, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। फिर हो गया न्यूरोटिपिकल और स्पेशल नीड्स, अब वो भी खत्म हो गया, क्योंकि हम जब स्कूलों में खुद भी पढ़ते थे तो हमें पता है कि चार पांच लोग मर मर के पास होते थे,
1: जी
0: और चार पांच टॉपर ही थे, वो लड़ते रहते थे फर्स्ट सेकेंड पोजिशन के लिए, और बाकी मोस्टली बीच में आते थे। तो हम सबको एक्सेप्ट करते हैं एज अ नॉर्मल डाइवर्सिटी। तो अभी ये कहा जा रहा है, तो हम स्पेशल नीड्स वगैरह बिना बोल के इसको एक न्यूरो डाइवर्सिटी करके माने, और जो भी हम लक्षण ये जो बताए, इतने सारे बताए और भी हैं और लक्षण, तो वो एक तो हर एक में नहीं होते, पर ये देखना है पेरेंट्स को कि अगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय ऐसे लक्षण हो तो चिंता का विषय है, लेकिन किसी भी बच्चे में ये कभी कभार तो हो ही सकता है।
1: जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो आपने मेंशन करी। और एक चीज और जो आपने अभी अभी बोली कि हर कोई अलग है, हर इंसान अलग है, हम सिर्फ बच्चे की बात ना करें, हर इंसान अलग है, उसके कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं, हम उसके साथ जीते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक टोटली इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। मुझे ये समझ में आता है आपकी बात से कि वो भी पूरे राइट्स रखते हैं, लेट अस इंक्लूड देम इन आर सोसाइटी एंड
0: दे आर पार्ट ऑफ अस। आई मीन वी आर नॉट गोइंग टू, मतलब वी आर नॉट टू से कि क्योंकि हम लोग सब लोग, हम लोग जब जो फेल होने वाले और टॉपर सब लोगों को इकट्ठा लेके चलते हैं, तो ये सारे भी थोड़े से सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के अंदर, उनके सोशलाइजेशन में, उसके सामाजिक जो हमारे अपने एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं उसके
1: एग्जैक्टली
0: हिसाब से वो नहीं फिट बैठ रहे, तो डजेंट मीन कि वो हटके हैं। और हर इंसान का, हर जीव का इक्वल राइट टू लाइफ, अ इक्वल राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, इक्वल राइट टू एजुकेशन है, तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, एवरीबडी इज हैविंग देयर राइट।
1: बिल्कुल, और इसमें सोसाइटी का रोल, पीयर्स का रोल, टीचर्स का रोल, पेरेंट्स का रोल, रिलेटिव्स का रोल बहुत

0: उसको तो कुछ कर नहीं सकते, पर उसका एक्सप्रेशन जो होता है उसको इन्वायरमेंटल के फैक्टर्स को उसको इफेक्ट करते हैं, विच आर कॉल्ड एपिजेनेटिक। तो अब अगर आप जेनेटिक वाले कारण में लेंगे, इनमें कुछ कई सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड देखा गया है, जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, न्यूरोफाइब्रोमाइटिस वगैरह बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं। प्लस इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर काफी सारे जीन्स हैं जिनके अंदर पाए गए हैं कुछ कॉपी नंबर वेरिएशंस। पर अभी भी अनुसंधान जारी है, हमारे यहाँ भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पे भी ये शोध जारी है पिछले 7 साल से, कि समझने के लिए कि क्या अनुवांशिक कारण है। इन्वायरमेंट कारण बहुत चौंकाने देने वाले हैं, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक्सपोजर टू द प्रेग्नेंट मदर्स, एयर पोल्यूशन एक्सपोजर इन द चाइल्ड, देन पेस्टिसाइड एक्सपोजर, हमारे खान पान में इतना पेस्टिसाइड कंटामिनेशन है, फादर्स एडवांस्ड एज, मदर्स एडवांस एज, हमने फादर्स के स्पर्म्स के एपिजेनोम का हमने स्टडी किया तो मिथाइलेशन डिफेक्ट मिले, हम सबकी तो हमारी सारी लाइफ स्ट्रेस से भरी है, तो स्ट्रेसफुल लाइफ्स इवन ऑफ फादर्स हैव बीन शोन। तो ये सारी चीजें एनवायरमेंट में है, और जो एनवायरमेंट जो जेनेटिक एक्सप्रेशन को इफेक्ट करेगा, आई फील वो सबसे ज्यादा गेम चेंजर होगा, बिकॉज हम एनवायरमेंट को जब चेंज कर देंगे तो फिर वी कैन इफेक्ट ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स।
1: वेरी राइट।
2: हाँ, जैसे कारण आपने बताया कि एनवायरमेंटल रहे, तो इसमें मैं कुछ एड ऑन करना चाहूंगा। अब जैसे आजकल स्क्रीन टाइम का बहुत चर्चा में है और इस पर बहुत रिसर्च भी हो रही है कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम, इवन नॉर्मल बच्चे भी अगर उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो मैंने देखा गया है उनमें ADHD या एग्रेशन की शिकायत बहुत हो जाती है। ऐसे ही ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं, मेरा ये मानना है कि जो 2-3 साल तक बच्चों का जीरो स्क्रीन टाइम होना चाहिए अगर 2-3 साल के बच्चे हैं, और 3 साल से अगर बड़े बच्चे हैं उनका भी जो स्क्रीन एक्सपोजर होना चाहिए अंडर द पेरेंट्स गाइडेंस होना चाहिए, कि जिससे ये जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज कम हो रही है और उनमें जो इरिटेबिलिटी सिंड्रोम आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना आए। और दूसरे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ये भी देखा गया है कि

0: कोई एक स्पेसिफिक वैक्सीन या वैक्सीन प्रेजर्वेटिव, तो वैक्सीनेशन के साथ कोई इसका नहीं है. स्क्रीन टाइम का जो बताया बिल्कुल एब्सोल्युटली है, स्क्रीन टाइम हैज टू बी लिमिटेड, बट ऑब्वियसली बिकॉज पेरेंट्स क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चे को मोबाइल पढ़ा दिया ताकि वो शांत रह जाए.
1: और इसमें एक नई रिसर्च निकल के आई है कि आजकल जो सिम्टम्स है एसोसिएटेड विद द सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर इन द ऑटिस्टिक चाइल्ड, और जो एंग्जाइटी है और जो अटेंशन डेफिशिएंसी है वो हाई लेवल ऑफ ग्लूटामेट से भी जुड़ी हुई है, जो ब्रेन में हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है. और इसका हम लेवल हम कम कर सकते हैं अगर हम विटामिन सी लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, मैग्नीशियम्स लेते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं. और ये ऑटिस्टिक बच्चे अगर थोड़ा योगा करते हैं, उनका इंक्लिनेशन अगर पेरेंट्स या स्पेशल एजुकेटर जो है योगा की तरफ इवॉल्व करते हैं, तो इनमें जो है ग्लूटामेट का जो लेवल है वो कम किया जा सकता है.
2: जी जी, तो हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म पर. एक और प्रश्न, जब डॉक्टर शेफाली आप बता रही थी बच्चों में जो प्रेवलेंस कैसे बढ़ती है, तो मेरे एक प्रश्न दिमाग में आया कि किसी का एक बच्चा ऑटिस्टिक हुआ है तो कितने चांसेस हैं कि दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक होगा.
0: अभी मैंने बोला अगर वो लड़की है तो 7% जनरल रिस्क है, अगर लड़का है तो 4%.
2: अच्छा,
0: लेकिन एक चीज देखना है कि अगर उसको डाउन सिंड्रोम था, सपोज एसोसिएटेड कोई आपको मिल रहा है, डाउन सिंड्रोम दिख रहा है, ट्यूबरस क्लोरोसिस दिख रहा है, तो वो उसके साथ एसोसिएटेड है, तो फिर हम दोनों चीजें देखनी पड़ेगी. उस डाउन सिंड्रोम का प्रेवलेंस के लिए भी जेनेटिक काउंसलिंग होगी और उसके उसके अंदर.
2: अच्छा.
0: और वो अदरवाइज 4 and 7% इज. एक और चीज था योगा मेंशन हुआ है.
2: हाँ.
0: योगा मोस्टली स्टडीज जो है मैंने उसमें काफी निकाल के रिसर्च देखा कि हमारे इंडिया से एक स्टडी थी और विदेशों से बहुत सारी स्टडी थी, विच इज अनफॉर्चुनेट. हम भी अभी एक स्टडी शुरू करने जा रहे हैं कीपिंग इन माइंड देयर इज एन एविडेंस कि आप उनको योगा सिखा सकते हैं. बिकॉज हम लोग ये नहीं कि जितना उसके अंदर अपने आप ही समझेंगे, तो जो थेरेपिस्ट है उनको, जो योगा के थेरेपिस्ट है उनको पहले बीमारी समझानी पड़ेगी, फिर जो हमारे को उसके टास्क को उसको स्मॉल स्मॉल करके ब्रेक करके योगा कराना, और उसको स्केचेस वगैरह के साथ. दे आर वेज टू टीच चिल्ड्रन विद ऑटिज्म योगा, एंड योगा हैज शोन बेनिफिशियल रिजल्ट्स. आई थिंक हमें इंडिया में और रिसर्च करना चाहिए.
1: यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ पर कलेक्टिव जो इंटरवेंशन है वो जरूरी है. एज ए टीम अगर काम करता है, स्पेशल एजुकेटर है, पेरेंट्स है, योगा थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, और योगा पे आजकल बहुत रिसर्च हो रही है.
2: बिल्कुल, बिल्कुल.
1: क्योंकि हमारा जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम है इतना पावरफुल बनाती है, जो कि उसमें वीक होता है ऑटिस्टिक बच्चों में.
2: तो मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगी कि हमारे जो गेस्ट योगेश, जिनकी आवाज आप सुन रहे हैं, ही इज अ योगा टीचर थेरेपिस्ट.
1: और मैं ये मानता हूँ कि जो ज्यादा जो सीवियर केसेस हैं उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, पर जो मॉडरेट ऑटिज्म है, माइल्ड ऑटिज्म है, हमें योगा करनी चाहिए, बच्चों को योगा के लिए प्रेरित करना चाहिए. और मैं जब योगा करा रहा हूँ, साथ साथ म्यूजिक थेरेपी भी करा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है.
2: जी जी, तो आप उसको एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. हमारी श्रोता जो है वो फोन लाइन पर है, वेट कर रहे हैं काफी देर से, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं. हेलो.
3: हेलो
2: जी, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में.
3: शालिनी मित्तल जी को, रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार.
2: जी चट्ठा जी नमस्कार.
3: और हमारे डॉक्टर साहबान को मेरा सादर प्रणाम.
2: नमस्कार.
3: मेरा सवाल यह है जी, ऑटिज्म जो है वो बुजुर्गों में उनको इग्नोर करने से या अकेलापन होने से भी हो सकता है क्या, कृपया बताने का कष्ट करें.
0: नहीं, ऑटिज्म ना एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जो कि शुरू में ही होती है, लेकिन कई बार कई लोगों को पकड़ में नहीं आती है. हमें बाद में ओल्ड एज, मतलब ओल्डर में जब एडल्ट हो जाते हैं, बड़े में भी आपको पहले नहीं पता होगा, लेकिन वो बाद में हो सकती है. लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो जो है वो अलग है, वो एडल्ट न्यूरोलॉजी के अंदर उसमें होता है. उनमें चीजें जो एडल्ट में आती है उसमें बाद में जाके डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर्स और पार्किंसन, वो जो है ओल्ड एज के इश्यूज वो आते हैं. तो वो ये ऑटिज्म नहीं है कि वो बाद में आएगी, जो ऑटिज्म है वो शुरू में आती है, कई बार मिस हो जाती है पकड़ में आने और एडल्टहुड में हो, पर ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में जाके हो. पर वो वाली जो डिमेंशिया है और पार्किंसनिज्म वगैरह है वो सब हो सकते हैं.
2: तो हम आगे एक बात करेंगे कि इसको कैसे पकड़ना है और सही तरीके से, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मिस हो जाती है और कई बार वो बाद में मैनिफेस्ट होती है, तो कैसे इसका निदान, कैसे टेस्ट किए जाते हैं, ये हम बात करेंगे. पर इससे पहले हम एक गीत सुन लेते हैं, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, फिर लौट कर आएंगे. सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर। साथ ही साथ आप इसे सुन रहे हैं हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हमारे साथ हमारे विशेष गेस्ट हमारे रेडियो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शेफाली गुलाटी और योगेश कुमार, और हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म पर। हमारे एक लिसनर है जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो
2: जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से।
1: जी राजेंद्र जी, आपका कोई प्रश्न है? आज हम ऑटिज्म पर बात कर रहे हैं।
2: जी, पहले तो आप तीनों साहिबान को तहे दिल से नमस्कार और आभार।
1: जी नमस्कार।
2: पहला सवाल मेरा है कि किसी शख्स को डिटेक्ट हो जाता है कि उसको जो ऑटिज्म है, तो क्या इसका घरेलू स्तर पर योगा, मेडिटेशन या फिर डाइट के तहत जैसे एलोवेरा, गिलोई और आंवला और केसर, इसका फिर इसका ट्रीटमेंट संभव है घरेलू स्तर पर? और अगर अस्पताल आना ही पड़े किसी वजह से मजबूरी में, तो क्या मेडिसिन और ये काउंसिलिंग से इसकी रिकवरी हो जाती है या फिर कोई मतलब सर्जरी ही करनी पड़ती है? ये दो सवाल हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। डॉक्टर शेफाली बता रही हैं, आपके प्रश्न का जवाब दे रही हैं।
3: हाँ जी, पहले का है ट्रीटमेंट के लिए ना, जो बेसिकली अभी ऑटिज्म का जो मेन स्टे ट्रीटमेंट बिहेवियर इंटरवेंशन होता है, जो बहुत सारी बिहेवियर थेरेपीज होती है, ABA, स्ट्रक्चर टीचिंग, सेंसरी इंडिकेशन वगैरह, जो इंडिविजुअलाइज किया जाता है बच्चों के लिए, और किसी जगह किसी चीजों में उनको दवाई दी जाती है। लेकिन जो दवाई दी जाती है उसके अंदर जो होता है, अगर उनको मिर्गी पड़ रही है उसका, या सोने में प्रॉब्लम आ रही है, स्लीप ऑनसेट लेटेंसी बोलते हैं उसमें, या बहुत चंचल है, या बहुत अग्रेसिव हो रहा है, गुस्सैल हो रहा है, इन सब सिचुएशन में मेडिसिन दी जाती है फॉर सम टाइम। पर मेन स्टे वो इंडिविजुअलाइज जो बिहेवियर बनाते हैं प्लान, साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यू नो, और ये आपका जो स्पेशल एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट वगैरह मिलके आपका इमीडिएट प्लान होता है। दूसरा एस्पेक्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। अप टू 80% जो हमारे ऑटिज्म के पेरेंट्स होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन खुद ही ट्राई करते हैं इंटरनेट से देख के, जिसमें बहुत सारे होते हैं जिसमें आप लोगों ने नाम लिए हैं। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वाले हैं जिसके अंदर कई बार नुकसानदायक भी हो सकते हैं, जैसे कि कीलेटिंग एजेंट्स हैं, हैवी मेटल्स पे हमारा भी अनुसंधान चल रहा है जब, लेकिन हैवी मेटल्स जब हाई हैं तभी देनी है दवाई, उनकी दवाई वैसे ही दे दी तो उस पे नुकसान हो जाता है। तो वैसे कुछ वो लोग नुकसानदेह हैं, कुछ चीजों पे

0: अभी अनुसंधान चल रहा है जिसमें पोटेंशियल बेनिफिट है, जैसे योगा है, म्यूजिक थेरेपी है, जो हम लोग म्यूजिक थेरेपी भी कर रहे हैं, और साथ में ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट है, स्पेसिफिक डाइट है, आपका ऐसे एलोवेरा या कोई ऐसी चीज करने के लिए नहीं। क्योंकि मेरे पास कई बार पेरेंट्स आते हैं, वो चीनी बंद कर दिया किसी ने दूध बंद कर दिया, किसी ने सिर्फ आटा बंद कर दिया, वो सब अलग अलग करते हैं। वी शुड नॉट डू लाइक दैट। हमारा भी साइंटिफिक बेसिस है, ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट का ट्रायल किया है हमने और उसमें हमारे अभी रिजल्ट्स फाइनल कर रहे हैं और हमें फायदा लग रहा है, तो होगा तो वो प्रॉपर डाइट लेना है। तो ऐसे छोटा मोटा चीजें में नहीं है, और आप नेट में पढ़ेंगे ऑटिज्म डालेंगे तो 7 बिलियन हिट्स हैं। तो अभी ऐसा है, आपको समझना है, अपने डॉक्टर से थेरेपिस्ट सबसे मिले जिनका आपका प्लान बनाएगा, और डॉक्टर्स विल ऑल्सो गाइड यू कि जोन से भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के ऊपर, क्योंकि अभी वो शुरू हुआ ब्रोकली के ऊपर, सल्फोरोफेन है, उसका भी अभी एविडेंस नहीं है, आप समझ रहे हैं, पूरा एविडेंस नहीं है, तो इसलिए जब तक पूरी एविडेंस नहीं आती है, और कई सप्लीमेंट्स के ऊपर भी कंप्लीट एविडेंस नहीं है, तो आप ऐसे ही मत ट्राई करिए। और एक ध्यान रखिए, आप कई बार सोचते हैं विटामिंस हैं, लिए जाओ कोई नुकसान नहीं होगा, पर हम समझिए कि हमारे जो विटामिंस हम लेते हैं, जैसे विटामिन सी है, वो तो यूरिन में चला जाता है बिकॉज वाटर सॉल्युबल है, विटामिन डी ई वगैरह जो है दे आर फैट सॉल्युबल, तो एक्स्ट्रा लेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटीज हो जाती है, तो अपने आप ही समझ के इवन विटामिंस के वगैरह के नाम से ऐसे नहीं लिए, इन सब क्यूरेटिव नहीं है।
1: जी जी, और बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शेफाली यहां बोल रही है, कोई भी चीज को सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, यह हार्मफुल भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब मैं यहां ये जानना चाहूंगी कि एक आपकी जो मुझे पता है एक साइट है या कोई नंबर्स हैं जहां पर एम्स की जो अप्रूव्ड चीजें हैं वो आप डालते हैं, वो मुझे अगर श्रोताओं के साथ साझा कर लेंगे तो।
0: एक हमारी वेबसाइट है www.peed मतलब पीड मतलब बच्चा, NEURO मतलब न्यूरो मतलब ब्रेन, पीड न्यूरो एम्स मतलब एम्स, पीईडी NEURO AIIMS.org, उसमें जाएंगे तो उसमें पेरेंट्स कॉर्नर का सेक्शन है, उसमें ऑटिज्म की काफी सारी किताबें हैं और उसके अंदर कई वीडियोस हैं आप लोगों के लिए। और एक हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1800 11 3 7 6 1800 11 7 7 6, तो उसमें हमारी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी नर्सेज होते हैं, जो 13 अप्रैल 2018 से हमारी ये 24 घंटे टोल फ्री नंबर चल रहा है, नॉट ओनली फॉर ऑटिज्म, फॉर ऑल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो उसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है। और हमें समझना है कि इसके अंदर जो है, जो डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डायग्नोसिस के लिए कोई आपको फैंसी टेस्ट नहीं चाहिए। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं, 1000 किस्म के टेस्ट करा के आते हैं, कुछ टेस्ट इंडिया में कराते हैं, कुछ बाहर भेज के कराते हैं, फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जिसमें हम लोगों ने सोशल कल्चरल सेंसिटिव टूल्स बनाए हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से बनाए हैं। एक बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हुआ है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो डिफरेंट है बलिस्मत हमारी फैमिली में। एक एग्जाम्पल दूंगी, एक स्लीप क्वेश्चनेयर है हमने यूज किया, CSHQ स्लीप चाइल्ड्रन स्लीप हैबिट क्वेश्चनेयर, उसमें एक सवाल है, बच्चा अगर पेरेंट्स के साथ सोता है तो वो अबनॉर्मल माना गया है, उसकी स्कोरिंग वैसी हुई
1: अच्छा।
0: है, हमारे बच्चे तो 99% अपने साथ ही सोते हैं, तो आपको ये सारे सोशल कल्चरल सेंसिटिव टूल ही बनाने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने ये टूल्स बनाए हुए हैं, वैलिडेटेड है, उसकी मोबाइल ऐप भी है, पीड न्यूरो एम्स डायग्नोस्टिक्स, जल्दी से बोल रही थी क्योंकि नहीं बोल रही, क्योंकि पेरेंट्स के लिए नहीं है, वो डॉक्टर्स के लिए है
1: अच्छा।
0: तो पीड न्यूरो एम्स डायग्नोस्टिक्स ऐप है, जो गूगल और एप्पल प्ले स्टोर में, पर वो अभी डॉक्टर्स के लिए है टू डायग्नोस। हमने स्क्रीनिंग टूल भी बनाया है जिसमें से पेरेंट्स सस्पेक्ट कर सकते हैं, इवन यू नो फ्रॉम 1 मंथ टू 2 ईयर्स, वो उसकी अभी ऐप बनाएंगे तो फिर वो पब्लिसाइज करेंगे ताकि पेरेंट्स उसमें कर सकें।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये सब जानकारियां होना, तभी हम उसका लाभ भी उठा पाएंगे। हमें एक ये मैसेज किया है रमन जी ने द्वारका से, लिख रहे हैं कि मेरा सवाल है कि ऑटिज्म बच्चों की इको लेलिया कैसे फिनिश करता है, कैसे कम हो जाती है, योगेश आप बताना चाहेंगे इसके बारे में।
2: जी देखिए, ऑटिज्म इज मार्क्ड बाय इम्पेयरमेंट इन स्पीच एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसमें हमारा एकोलेलिया भी आता है। एकोलेलिया में क्या होता है कि रेपिटेशंस ऑफ द वर्ड्स यूज्ड बाय द अदर्स, ऑटिस्टिक बच्चा दूसरा जो बोल रहा होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर एक ऑटिस्टिक बच्चे से पूछा जाता है क्या आप इस खिलौने से खेलना पसंद करेंगे, तो उसका आंसर होना चाहिए यस या नो में, पर वो यस या नो में आंसर ना देके वो बोलेगा टॉय टॉय टॉय।
1: अच्छा।
2: तो टॉय टॉय का जो रेपिटेशन इसने कहाँ से लिया, जो उसने सुना, और इसे ही हम एकोलेलिया कहते हैं। और एकोलेलिया ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट भी हो सकता है, कभी एकोलेलिया होता है कि बाहर बच्चा किसी की कोई चीज सुनकर आ गया है।

0: जैसे रमेश बहुत गंदा लड़का है, तो वो घर में आके उसे दोहराता रहेगा, रमेश बहुत गंदा लड़का है, रमेश बहुत गंदा लड़का है।
1: अच्छा
0: तो इस टाइप के जो रिपीटेटिव जो वर्ड्स हैं बीइंग यूज्ड बाय द अदर्स, तो ये सारे एकोलेलिया में आते हैं।
1: जी, ये हमें एक मैसेज किया है परिधि ने, इन्होंने लिखा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम लिसनिंग टू द प्रोग्राम एंड आई वांट टू थैंक यू शालिनी जी फॉर ब्रिंगिंग ग्रेट टॉपिक्स एंड ग्रेट डॉक्टर्स ऑन द शो विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, थैंक यू सो मच फॉर बींग कनेक्टेड एंड फॉर लिसनिंग टू आर प्रोग्राम्स। इसी तरह से और भी हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा यह कार्यक्रम सक्सेसफुल है। ये हमें लिखकर भेजा है श्याम मित्तल जी ने रोहिणी दिल्ली से कि क्या वेदर सच चाइल्ड शुड बी केप्ट एट होम और सोसाइटी और शुड ही बी केप्ट सेपरेटली इन अ डिफरेंट ग्रुप, प्लीज।
2: एब्सोल्युटली होम विद एवरीबॉडी। एक बहुत दुख का विषय है कि आपने देखा है कि लोगों की शादियां, बर्थडे पार्टीज और मूवी थिएटर्स में कितने आपको न्यूरोडाइवर्स लोग मिलेंगे
1: जी।
2: तो वो इसलिए नहीं बाहर निकल पाते हैं, उनका भी दिल करता है बाहर घूमने का, दे आर हैप्पी उनका, लेकिन हैप्पीनेस शेयर करने का अलग तरीका है। हम क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे सोसाइटी में कोई बाहर आ जाता है व्हीलचेयर में, व्हीलचेयर ऑब्वियसली ऑटिज्म वालों में नहीं है पर किसी भी और भी, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को तो वो सब अजीब वे से देखा जाता है बिकॉज वी हैव स्टिग्मा अटैच्ड, बिकॉज लोग इतनी बुरी नजर से देखते हैं, ह्यूमैनिज्म नहीं है। हमारे को ये समझना है कि हर इंसान, हर जीव आत्मा का इक्वल राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, तो उसमें एक्सेप्ट करना जब तक सोच। और दूसरी बात है, हम लोग सारे जहां में बोलते रहते हैं एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, पहले तो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना है बच्चे को। ये नहीं है कि दो बच्चे हैं, एक में ऑटिज्म है एक में नहीं है, तो यू फीलिंग यू कीप ब्लेमिंग द चाइल्ड कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई। यू हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड एट होम, देन यू नो इन द इमीडिएट फैमिली, फिर स्कूल की बात आती है, फिर सोसाइटी की बात आती है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। और एक और पॉइंट आता है कि क्योंकि इसके अंदर आप इवन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में कई बार सस्पेक्ट कर सकते हैं, 6 महीने का बच्चा जो देख पा रहा है सुन पा रहा है लेकिन आपके नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपका बच्चा अगर 12 महीने तक टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, आपको बिल्कुल बस बड़बड़ाना भी नहीं शुरू किया, 16 महीने पे एक शब्द नहीं बोल रहा है मीनिंगफुल, 2 साल पे मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा है, और अगर कोई भी शब्दावली आके चली गई है तो, और कई बार ये जैसे बताया कि आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, क्या कई बार होता है ग्रैंड पेरेंट्स, मैं ब्लेम किसी को नहीं कर रहे, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि माँ बाप भी रिजर्व थे, माँ बाप भी देर से बोले थे, तो वो ठीक हो जाएगा, आई मीन दैट ठीक हो जाएगा, यू मिस द बस बिकॉज क्या
1: एटीट्यूड की प्रॉब्लम।
2: हाँ हाँ, बिकॉज ये जो कई बार रिपीटेटिव जो बिहेवियर आ रहे हैं इनके, उसको स्टीरियोटिपीज कहते हैं, फिक्स इंटरेस्ट है, ये सब आगे डेवलप कर रहे हैं अगर हम पहले पकड़ लें। और क्योंकि हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी है, कई देखा गया अनुसंधान में कि बच्चे के जो ब्रेन की कनेक्टिविटीज में अबनॉर्मलिटीज और डिफरेंट होने लगता है, तो अगर हम एक्ट करना शुरू कर दें पहले तो फिर वो बनेंगे नहीं ना अबनॉर्मलिटीज, तो आउट यू आर इफेक्टिंग अर्ली इंटरवेंशन से आपका आउटकम बेटर होगा।
1: जी
0: आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जैसे एक मिरर न्यूरॉन्स है, इस पर बड़ी रिसर्च हुई है कि बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चे इमिटेशन नहीं कर पाते हैं, ना तो साउंड का कर पाते हैं ना किसी पेरेंट्स की एक्टिविटीज का कर पाते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे से अगर पेरेंट्स स्माइल करते हैं तो बच्चा जो है रेसिप्रिकेशन में स्माइल करके दिखाता है, पर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो सही तरीके से इमिटेट कर पाए साउंड को या बिहेवियर को। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कहा कि 5 साल में क्या होते हैं कि ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, जो मिरर न्यूरॉन जो एक्टिवेट नहीं है सही ढंग से, तो अगर हम उनको स्टिमुलेशंस देते हैं, अगर स्टिमुलेशंस के थ्रू हम प्रॉपर उनसे अगर बातचीत करते हैं या एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस उनको बच्चों को देते हैं, तो उनकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है बढ़ सकती है, मिरर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं।
1: तो बात वही है कि इसको कितनी जल्दी पहचाना जाए
0: जी।
1: और उसके लिए पेरेंट्स के साथ रहना उन्हें बहुत जरूरी।
0: मैं कहना चाहूंगा कि जो 1.5 से 3 साल जैसे ऑनसेट होता है जो ऑटिज्म का, वो 1.5 से 3 साल में आइडियली हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता। जैसे अभी मैडम बता रही थी कि एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है कि माता पिता को ये एक्सेप्ट करना, अरे अभी तो जैसा कहा कि इसके पिताजी भी बहुत लेट
2: ठीक
0: बोले
2: हो जाएगा,
0: थे,
2: ठीक हो जाएगा, एक्सेप्टेंस बाद में आएगी। अभी ये है कि हम रेड फ्लैग ही नहीं दे रहे,
0: रेड
2: मतलब एक्सेप्टेंस बाद में आएगी। पहले तो आ रहा है ना कि हम आ ही नहीं रहे हैं, फॉरवर्ड की प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट की प्रॉब्लम है
0: जी। जो जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, मतलब कि कैसे जो जैसे कि देखा गया कि 6 मंथ तक जो है स्माइल्स कर लेना चाहिए बच्चे को, और 12 मंथ तक उसमें जो बैबलिंग होना चाहिए जिसे हम बेबी टॉक

0: रहते हैं वो सारा आ जाना चाहिए। एंड एक होता है रिस्पॉन्स टू नेम, 12 मंथ्स तक उसमें ये भी आ जाना चाहिए कि अगर बच्चे का हम नाम पुकारते हैं तो वो अपने नाम से जो है रिस्पॉन्ड करे,
1: पर ऐसा हो नहीं पाता है। योगेश जी, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो लोग ये याद ना रखे कुछ भी, पर ये समझे कि आगे पीछे जो बाकी बच्चे हैं उसी की एज के हिसाब से उससे थोड़ा सा इनको पीछे लग रहा है या कुछ चिंता लग रहा है, तो बस ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर के पास जो भी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है, नहीं तो पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को दिखाएं ताकि वो देख ले कि सब ठीक ठाक है या कोई चिंता का विषय है।
2: ये लगभग ऐसा ही एक मैसेज है जिसका जवाब आप लोग अभी दे रहे हैं, तो मैं उनका पढ़ देती हूँ मैसेज। उन्होंने लिखा है, डज ऑटिज्म अफेक्ट चाइल्ड स्पीच व्हेन हिज पेरेंट्स कैन टॉक नॉर्मल, द चाइल्ड हैज अ स्टटरिंग वॉइस, ही कांट स्पीक फ्लुएंटली, ही इज 8 इयर्स ओल्ड।
1: तो नहीं, वो थोड़ा डिफरेंट है।
2: अच्छा, ये डिफरेंट है, तो चलिए इसका बताइए।
1: इसमें यह है कि इसमें जो बच्चा नहीं बोल रहा है, ठीक है, वो बोल नहीं रहा है, तो वो लैंग्वेज डिले हो रहा है।
2: अच्छा,
1: ये बात कर रहे हैं कि जो तुतला के बोल रहा है या उसकी क्लियर स्पीच नहीं है, वो आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है, वो दूसरी प्रॉब्लम है, वो स्पीच एंड लैंग्वेज में आती है, वो ऑटिज्म में नहीं है।
2: तो इनको भी दिखाना चाहिए,
1: इनको भी दिखाना डेफिनेटली चाहिए। हर चीज का एक्चुअली क्या है ना, हर चीज का उसका एक सोल्यूशन होता है, बट आपको एक प्रोफेशनल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है हो जाएगा, बिकॉज हम एक अंदर से है कि हाँ सब ठीक है, इट विल ओके।
2: जी जी, और जैसा आपने कहा घर के जो बुजुर्ग होते हैं कई बार वो भी कहते हैं नहीं ऐसा तो होता है, हमारे टाइम भी होता था पर सब ठीक ही हो गया, तो
1: रिजर्व है, स्कूल में जाएगा तो घुल मिल जाएगा।
2: जी जी जी,
1: दीज थिंग्स आर नॉट टू बी।
2: आप क्या कहना चाहिए?
0: और ऐसी सिम्टम्स, कई सिम्टम्स है जैसे हैंड फ्लैपिंग्स है और रॉकिंग है और क्लाइंबिंग है, एक ही जगह पे जो है क्लाइंब करता रहना, जंपिंग करते रहना और क्लैपिंग्स लगातार बजाते रहना।
1: मैं एग्जांपल बताऊं, मेरे पास एक अभी हम लोग जनरली पहले कुछ साल पहले, बिकॉज रनिंग एन ऑटिज्म क्लिनिक फॉर लास्ट 26-27 इयर्स, तो पहले तो हमारे 3.5-4 साल पे डायग्नोस हो रहे थे, अभी हमारे 1.5-2 साल में डायग्नोस हो रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे पास एक डॉक्टर मदर आए, वो उसके ये जो स्टीरियोटिपीज की बात हो रही है, वो बहुत ज्यादा हाथ हिलाए जा रहे थे विदाउट एनी रीजन। स्टीरियोटिपीज आर बेसिकली मूवमेंट्स विच आर नॉट एक्सप्लेन, कभी हाथ को हिला रहा है या जंप कर रहा है एक जगह, या वो पंजों पे चल रहा है, ये नहीं कि उसके पैर में प्रॉब्लम है, पंजों पे ही चल रहा है। तो वो उन्होंने आके दिखाया एंड एक्चुअली ऑटिस्टिक फीचर्स निकले। दैट मीन्स अगर हमें कुछ भी लग रहा है कि हटके है तो प्लीज
2: दिखाना चाहिए। बिल्कुल, और ये कार्यक्रम हम आज इसीलिए कर रहे हैं जिससे हमारे श्रोता इसको समझ पाए कि ये रुकने की सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सीधे डॉक्टर के पास।
0: मैडम एक टेक्निकल बात और आती है कि इसमें ये जो बिहेवियर हमने कहा सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर, ये सारा स्टीमिंग में आता है। अब हमें ये भी समझना होगा कि कभी कभी डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, कई टिक्स मूवमेंट्स भी होते हैं जैसे टर्निंग द हेड और नेल बाइटिंग या लिप बाइटिंग। तो इसमें ये देखना है कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये बड़े इन्वॉलेंट्री होते हैं और ये टॉरेट सिंड्रोम से जुड़े होते हैं।
1: आई थिंक वो डॉक्टर को हम ये इनको छोड़ देते हैं, वो डॉक्टर को पता लगाना चाहिए, पीडियाट्रिशियन बताएगा।
0: मैं इसलिए श्रोताओं को भी ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये टिक्स मूवमेंट्स हैं तो ये स्टिमरिंग और टिक्स मूवमेंट्स में भी बड़ा डिफरेंस है।
2: हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, इनसे पूछ लेते हैं इनकी समस्या। हेलो,
3: नमस्ते मैम।
2: जी जी नमस्कार, आप रेडियो डॉक्टर
3: में?
2: जी जी बताएं।
3: मेरा बच्चा है 4 साल का है, वो ना बोलता है ना चलता ना खाना पीना खाता कुछ भी ना है का।
2: अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रही है बता दीजिए।
3: अलीपुर से बोल रहा हूँ।
2: जी जी,
1: अभी उसका 4 साल का है ना, तो नॉर्मल पैदा हुआ था या कोई ऑपरेशन से हुआ था?
3: नॉर्मल हुआ था।
1: हाँ, तो एकदम से रोया था?
3: हाँ रोया था का।
1: घर में पैदा हुआ था अस्पताल में?
3: घर पे ही।
1: अच्छा, अभी उसने चलना शुरू किया, बैठना शुरू किया?
3: बैठो ना करता है ना बोलता।
1: अच्छा, बैठना बोलता नहीं करता ना। फिर बेटा ऐसा है, आपको एक बच्चों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अगर क्योंकि जो ऑटिज्म के बच्चे हैं ना उसमें जनरली जो चलने वलने की प्रॉब्लम नहीं होती है, हाथ पैर सही चलाते हैं, उसमें जो हमने बताया था ना सामाजिक अभाव और कम्युनिकेशन जो संचार की प्रॉब्लम है, जो आपके बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसको सेरेब्रल पॉल्सी हो, उसमें क्या होता है कि कोई भी प्रकार से आपके बच्चे के ब्रेन में डैमेज हुआ होता है। क्यों? अगर बच्चा देर से रोया है जन्म पे, या कभी बिस्तर से भी गिर गया है, या कहीं छत से गिर गया है, या कभी दिमाग में इन्फेक्शन हुआ है। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, कारण बता रही हूँ कॉमन, पर कई बार कोई चीजें होती हैं हमें पता नहीं लगती हैं, और कई बार अगर ये सब नहीं होती तो कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं, मैं ये कह रही हूँ। तो इसलिए अगर बच्चे के डॉक्टर को बताएंगे ना तो हो सकता है कुछ अनुवांशिक कारण हो या कुछ ब्रेन में मैलफॉर्मेशन हो, तो बच्चा देख के ही पता चलेगा और कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। पर आप दिखाइए जरूर अपने घर के आसपास एक बच्चों के डॉक्टर को, और अगर आपको यहां दिखाना है तो वो हेल्पलाइन नंबर में आप अपना डिटेल देख के आपको अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, हम लोग देख के ताकि गाइड करेंगे, क्योंकि उसकी

0: देखो हमें क्या है, जिस भी बच्ची को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पता करना है कि क्या है, और उसके लिए इसकी जिंदगी में जो उसका मैक्सिमम क्षमता है, पोटेंशियल है, उस तक लेके जाना है, तो जो भी प्रॉब्लम
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। और ये एक मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने लिखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्किप कर जाए ऑटिज्म, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ऑब्जर्वेबल होते हैं, बहुत एविडेंट होते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा स्किप हो जाता है। एंड वॉट वन शुड टेक केयर वंस डायग्नोज इट इज डायग्नोज इन अ टीनेज चाइल्ड।
0: ओके, एक्चुअल अभी जो प्रेविलेंस यूएस का लास्ट ईयर का डेटा का है ना, मार्च 2024 का 1 in 36 है, तो काफी कॉमन है। और WHO कहता है कि पूरे वर्ल्ड में 1 in 100 को उनको लगता है कि ऑटिज्म है, तो दैट इज प्रेविलेंस के हिसाब से। दूसरा यह है कि आप कह रहे हो आपको लग रहा है कि लक्षण, ये लक्षण तब है जब कोई आपको एक्सपर्ट देख रहा है और उसने ये सारी चीजें देखी। हर बच्चे में हर चीज नहीं होती और हर बच्चे में हर चीज की सिवेरिटी नहीं होती। और ऑटिज्म सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑटिज्म की जो है, जो यूएस वगैरह का विदेशों का जो डेटा है उसमें कहते हैं कि 40% बच्चों में मानसिक समझ कम होती है, परंतु हमारे हिंदुस्तान में बच्चों में, जो हमने बच्चे का अभी हमने 1874 बच्चों का एनालाइज किया डेटा हमारे, उसमें हमने देखा कि 80% में कोमॉर्बिडिटीज थी, मतलब या तो चंचलता या दौरे पड़ने या इत्यादि बहुत सारी, दैट मीन्स पूरा बच्चे को देखना पड़ेगा। और हमारे 70% बच्चों के दिमाग में समझ थोड़ी कम थी। तो इसीलिए क्या होता है, जिनकी समझ ठीक होती है तो उनमें चंचलता होती है, तो वो ADHD करके निकालते हैं, वो चले जाते हैं, मिस हो जाते हैं, वो देखते नहीं है, तो दे गेट मिस्ड। सो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दूसरा, अगर एक बच्चे को किशोर अवस्था में है प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जैसे नॉर्मली एडोलेसेंट में किशोर अवस्था में,
1: जी
0: क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे, और किसी भी किशोर अवस्था में कोई भी बच्चा न्यूरोडाइवर्स है, तो कोई भी बच्चे बाकी आम बच्चों में भी कितनी बिहेवियर प्रॉब्लम है, कोई गुस्सा हो जाता है, माँ बाप की सुनता नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं इन बच्चों में, ऑटिज्म में स्पेसिफिकली, क्योंकि उनकी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, फिजिकली वो हार्मोन्स आ रहे हैं, मेल हार्मोन्स आ रहे हैं, बॉय बोल रहे हैं, तो इनके अंदर कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर जो होता है वो जनरली हर एक इंसान में होता है, पर वो हमेशा प्राइवेट होता है और कोई बात नहीं होती, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं होती है, तो वो मिस हो जाता है, पता नहीं चलता, पर इनके अंदर ये इनहिबिशन नहीं रहता कि क्या पब्लिक है क्या प्राइवेट है, तो इनको वो सेल्फ स्टिमुलेटरी पब्लिक के लिए भी हो सकता है, दैट इज हाउ दे हैव टू बी टोल्ड कि वो उसको के अगर पेरेंट्स को दिखाना होता है कि जो हमारे डेवलपमेंट के जो हमने खुद बनाए हुए प्रिंट आउट्स की कैसे बॉडी ग्रो हो रही है और कैसे वो फोटो से बताना है, और फोटो से वो बच्चे को समझाते हैं पेरेंट्स में से फादर या मदर जो भी क्लोज है कि बताओ जी आपकी बॉडी बढ़ रही है, हेयर आ रहे हैं इधर, ये सब, तो दैट इज नॉर्मल, सो दे बिकम कंफर्टेबल, तो फोटो से उनको समझाना है। और अगर इनका सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर होता है देन दे हैव टू से कि भैया माँ बाप के सामने तो कर लो, बहन के सामने नहीं करना और किसी के सामने,
1: जी,
0: लेकिन
1: जी.
0: यह है कि अगर वो कोई कर रहे हैं तो आपको उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा दूसरे चीज में, उसी समय नो नो नहीं करना है, फिर उनका रिटेलिएशन होता है,
1: जी जी
0: तो ये
1: बहुत
0: सारी
1: तरह से
0: चीजें
1: उनको समझना बहुत
0: हाँ,
1: जरूरी
0: और
1: होता
0: इनकी
1: है।
0: साइको सोशल चीजें पूरी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके अंदर जो बाकियों में इतनी सारी बिहेवियर इश्यू आते हैं तो इसमें और आता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन देयर इनर फीलिंग्स एज वेल।
1: जी, हमारे एक और लिसनर लाइन पर हैं। हेलो
2: जी नमस्कार,
1: जी नमस्कार,
2: मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी बताएं प्रश्न
2: और मेरा
1: करें।
2: पूछना है कि जो सेरेब्रल पॉलिसी के मरीज हैं, क्या एज रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं, यानी उनकी उम्र लंबी नहीं होती, क्या ये मिथक है?
0: ऑलरेडी चर्चा का विषय नहीं है पर आपको बता देते हैं, वो कोई भी डैमेज हो रहा है, क्योंकि कई सेरेब्रल पॉलिसी बच्चों में, कुछ बच्चों में ऑटिज्म भी हो सकता है, तो उसमें क्या है कि कोई भी बच्चा जो डेवलपिंग ब्रेन है, चाहे वो प्रेग्नेंट मदर है उसके पेट में के टाइम है, डिलीवरी के आसपास के टाइम है, या फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ में, या तो देर से रोया है बच्चा, या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, या कोई चोट लगी है, जैसे मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंगो इंसेफेलाइटिस होता है, कोई स्ट्रोक हो जाता है, कोई भी चीज ब्रेन में डैमेज हुई है इन द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ, डैमेज एक टाइम का ब्रेन को, लेकिन वो डेवलपिंग ब्रेन है तो उसके रेपरकशंस आगे होते हैं, तो उनके हाथ पैर में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ढीले हो जाते हैं, या मोस्टली लोगों में बाद में टाइट हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें अलग है सेरेब्रल पॉलिसी में होते हैं।
1: वो हम कभी फिर से आपके साथ बात करेंगे। आज तो हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म पर और समय कम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एक्सपर्ट्स के पास है। ये मैसेज हमें किया है प्रीति ने चंडीगढ़ से, और वो लिख रही है, आई एम अ स्कूल काउंसिलर, यू हैव टॉक्ड अबाउट सम स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल ऑन द एम्स वेबसाइट, कैन यू टेल अबाउट दैट एंड कैन स्कूल काउंसिलर्स यूज द सेम फॉर स्क्रीनिंग चिल्ड्रन? एक तो ये जानना चाहती है। दूसरा इनका एक प्रश्न और है कि आज

0: बहुत इनफर्टिलिटी है और पीपल आर गेटिंग आईवीएफ डन, तो क्या ये भी रीजन हो सकता है इंक्रीज इन स्पेशल नीड चिल्ड्रन?
1: फर्स्ट थिंग जो हमने मैंने बोला स्क्रीनिंग वाले बनाए, मैंने साथ में ही बोला था उसकी ऐप अभी बनाई नहीं है, ऐप बना रहे हैं. आपको अगर चाहिए वो स्टूल वो हम आपको दे देंगे, आप मुझे मेल कर दीजिए. मेरा नाम है जो है shefaligulati@gmail.com है, DFF लगाइएगा तो वो मैं आपको मेल कर देंगे. पर हम ऐप बना रहे हैं, वो हर एक को बनाने के लिए मनी भी अरेंज करना पड़ता है. सेकेंड थिंग वॉज आपने जो IVF दिट हैज बीन शोन वर्ल्ड वाइड दैट देर इज द प्रेवलेंस

0: मिनुक्स,
1: हो
0: और जो
1: सकता
0: न्यूरो
1: है।
0: डेवलपमेंट प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, और स्पेशली जब वो स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं ओवम में, जो इक्सी करते हैं उसमें और भी ज्यादा
1: तो
0: होती है,
1: रीजन हो
0: हो
1: सकता है।
0: सकता है
1: जी
0: डेफिनेटली।
1: जी यशपाल जी हमसे पूछ रहे हैं द्वारका दिल्ली से कि नमस्कार आप सब डॉक्टर्स को, और थैंक्स फॉर अनकॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। माय क्वेश्चन इज, कैन प्रिजर्विंग कॉर्ड ब्लड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म, एंड वेदर इट इज रियली यूजफुल टू प्रिजर्व स्टेम सेल्स ड्यूरिंग बर्थ?
0: सी ए के बहुत बड़ा एक पैंडोरस बॉक्स आपने खोल दिया। एक तो पर स्टेम सेल आइस ऑफ टुडे ऑटिज्म में उसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर क्लिनिकल यूज। हम भी अनुसंधान कर रहे हैं और इस वक्त भी हमारी एक रिसर्च चल रही है कि स्टेम सेल का भी एक पार्ट एक्सोसोम्स हटा के हम ऑटिज्म के माइस मॉडल में स्टडी कर रहे हैं। तो अब दूसरा कि स्टेम सेल को अगर हम प्रिजर्व कर दें, टेक्निकली स्पीकिंग यू नो यू कैन डू दैट, पर वो जब है कि कोई अगर और प्रॉब्लम हो जो जेनेटिक ना हो, क्योंकि अगर कोई ऑटिज्म में तो आपको बताया कुछ जेनेटिक अनुवांशिक है, कुछ एनवायरमेंटल है, कुछ एपिजेनेटिक है, तो उसमें तो बिल्कुल अभी नहीं है,
1: नहीं है।
0: पर आप कह रहे हो कि वैसे इस प्रिजर्व करें कि नहीं, वो भी एक बड़ा डिबेट है।
1: yes.
0: पर पॉइंट इज कि अगर आप कर रहे हो तो कोई जेनेटिक बीमारी बच्चे में हुई तो उसमें तो काम नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टेम सेल में भी तो वो सेम ही बीमारी है। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो पोटेंशियली फ्यूचर में आ सकता है, पर इट इज नॉट वेरी क्लियर फॉर मी टू रिकमेंड और नॉट।
1: गॉट इट। एक बात आपने डॉक्टर शिफाली बीच में बोली थी कि इसमें सिवियरिटी भी होती है,
0: yes.
1: तो हम चाहेंगे कि हम थोड़ा इस पर भी डिस्कस कर लें, सिवियरिटी क्या है इसमें अगर हम ऑटिज्म की बात करते हैं। योगेश आप बताएं।
2: हाँ देखिए, डिग्री ऑफ सिवियरिटी के आधार पे इसे तीन भागों में बांटा गया है। हम कह सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या हो रहा है कि आप में कोई वर्बल स्किल्स इस बच्चे में नहीं होता, माइल्ड में जो है बहुत कम जो है वर्बल स्किल्स जो है होता है, और अगर हम सीवियर्स की बात करें तो यहाँ बिल्कुल वर्बल स्किल्स नहीं है। इस तरीके से हम एपिलेप्सी की बात करें तो जो सीवियर्स में जो है एपिलेप्सी के सिम्टम्स ज़्यादा कॉमन रहते हैं, और जो मॉडरेट में थोड़ी कम है और माइल्ड में बिल्कुल नहीं होते हैं, तो इस हिसाब से देखी गई है। और एक होता है सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, जो सीवियर्स ऑटिज्म होता है उसमें सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स बहुत होता है, जिसमें हेड बैंगिंग है और आपका रिस्ट बाइटिंग है, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, और मॉडरेट में थोड़ा कम होता है और माइल्ड में बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरीके से हम अगर सिम्टम्स के हिसाब से देखे जाए और डिग्री ऑफ सीवियरिटी के हिसाब से देखे जाए तो सब आपने देखा कि माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया और सीवियर हो गया।
1: जी जी बिल्कुल। और एक ये प्रश्न और आया है हमारे पास, पंकज शर्मा जी हमें लिख रहे हैं, जगह इन्होंने नहीं लिखी है, इन्होंने लिखा है कि मेरा लड़का बहुत एग्रेसिव है, उसको अगर डांटते हैं तो वो वापस मारता है और प्रॉपर बोल भी नहीं पाता, शब्द नहीं बोलता, प्लीज बताएं क्या करें, क्योंकि वो 6 साल का है।
0: इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप दिखाएंगे, एक आपको पूरी टीम देखनी पड़ेगी, एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट विद साइकोलॉजिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वगैरह। एक इम्पॉर्टेंस हमें देखना है कि हम ये देख रहे हैं कि वो एग्रेसिव है, वो इसलिए नहीं है कि आके उठा के हम दवाइयां शुरू कर देंगे। हमें देखना है, एनालाइज करके डिटेल में देखे कि क्या ट्रिगर था, क्या ट्रिगर था जिसकी वजह से वो हुआ है। तो वो देखते नहीं है पेरेंट्स, तो हमें ट्रिगर को हटाना है, ना कि उसके वो बिहेवियर को। दैट इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस सिचुएशन। और हमें ये भी समझना है कि हर वो दिखाएंगे तो उनका जब बच्चे का टेस्ट होता है उसका क्या डेवलपमेंट की क्षमता है, IQ कितना है, उसके हिसाब से ही हमें एक्सपेक्टेशन रखनी है। जैसे हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट होते हैं और सिवियर होते हैं, साथ में हाई फंक्शनिंग होते हैं, जिनका भी IQ 70 से ऊपर होता है उनको हम हाई फंक्शनिंग बोलते हैं, और कुछ एक सेवेंट होते हैं जिसमें एक्सेप्शनल क्वालिटीज होते हैं। आपको अगर अपना आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बता दो तो वो बच्चा एक सेकंड में आपको डे ऑफ बर्थ बता देगा।
1: अच्छा,
0: 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट नंबर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अपना मोबाइल फोन खोल देते हैं, वो 6 डिजिट इंटू 6 डिजिट मल्टीप्लाई एक सेकंड में कर देंगे, स्क्वायर रूट कितनी बार कर देंगे, तो मतलब एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती है। एंड ऑल्सो टू रिमेम्बर दैट पीपल लाइक आइंस्टाइन, मैरी क्वेरी, न्यूटन और ये यू नो ऑल ऑफ देम एंड मोजार्ट, इन सबको ऑटिज्म था, तो फिर भी वो कर सके, तो हटके जो भी है लेकिन वो इतना कुछ डेवलप कर सके हैं, तो सबको हमें एक्सेप्ट करना है। और आई नो टाइम इज रनिंग, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आई फील वेरी सैड फॉर वन पेशेंट फ्रॉम हरियाणा का एक विलेज में, उसके यहाँ स्कूल में इतनी बुलिंग होती है, उस बच्चे के कपड़े उतार के उसको गंदे नाली में घिसा देते हैं ऑटिज्म के बच्चे को, तो मेरे को इतना दुख आया कि आप सोचो कि आपके बच्चे के साथ ऐसा करेगा तो क्या है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी लिसनिंग शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू अंडरस्टैंड, टू स्कूल टीचर्स हैव टू अंडरस्टैंड, उन बच्चों को फिर बाद में ही सिखाएंगे ना स्कूल वाले को. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल.
1: बिल्कुल, वी कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स.

0: एंड बिल्कुल यहां पर मैं समझ पा रही हूं डॉक्टर शेफाली की जो मनस्थिति है और वो जिस तरह से बात कर रही हैं, एक डॉक्टर इस तरह से एक इमोशंस के साथ जुड़कर अपने श्रोताओं से बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डेडिकेटेड वो हैं अपने काम के प्रति। ऑटिज्म पर वो एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर शेफाली गुलाटी, और उन्होंने यहां अपना मेल आईडी भी पर्सनल बता दिया है कि आप उनसे सीधे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर डेडिकेशन, फॉर योर वर्क ऑन ऑटिज्म। और भी बात करना चाह रही हूं मैं, लेकिन समय हमें इजाजत बहुत कम देगा। मैं ये जरूर चाहूंगी कि चलते चलते एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आप दोनों के ले लूं। मैं बस यहां पर एक बार रिपीट करना चाहती हूं, वेबसाइट बताना चाहती हूं, www.pedneuroaims www.paidneuroaims.org जो मैडम ने बताई, साथ ही साथ एक नंबर मैडम ने बताया 1-800-111-7776। तो ये वो नंबर्स हैं, ये वो वेबसाइट है जहां पर आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन इस संबंध में मिल सकती है। तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, हमारे पास समय कम है, बस उतना ही बताएं हमारे
1: 10 seconds। माई पॉजिटिव ऑटिस्टिक आइडेंटिटी, दैट इज जिसको भी ऑटिज्म है उसमें जो उसकी पॉजिटिविटीज हैं हमें उसको देख के निखारना है, एंड वी आर ऑल न्यूरोडाइवर्स। और हम जो बात करते हैं कि सब है, मतलब न्यूरोडाइवर्स है, सबका इक्वल राइट है, तो हमें साथ में इक्विटी की बात करनी है, जिसके अंदर जो चीज की कमी है सपोर्ट थोड़ा देना है। एक दीवार है, अगर छोटे हाइट का बच्चा है तो उसको स्टूल थोड़ा लंबा देना पड़ेगा, बलिस्मत जो लंबे वाइट का, तो इक्विटी की बात है, लेकिन ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ।
0: बहुत अच्छी बात।
2: मैं तो कहूंगा कि ऑटिज्म के लिए जो गोल्डन रूल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला तो होप है, आप हमेशा आशा रखिए कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा, और आप कॉन्स्टेंट और परसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं ये नहीं कहता ये मेंटल कंडीशंस है, कोई इसका मैं कहूँ कि कोई पूरा क्योर मिल जाएगा, पर हाँ वो इतना अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएगा कि ताकि आगे चल के वो थोड़ा इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन पाए। होप है और एक्सेप्टेंस है, पूरा एक्सेप्ट करिए उनको पूरी तरीके से। और तीसरी चीज है एंगेज, उनको 24 घंटे उनको प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव चीजों में एंगेज रखिए, उनके साथ एम्पैथी रखिए और एक प्यार से उनसे अटैचमेंट रखिए। आप देखना प्यार में बहुत शक्ति होती है, अगर प्यार से उनके साथ एंगेज रहेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट निकल के आएगा। और एक मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि जो बहुत जबरदस्ती बच्चों को काउंसलिंग सेंटर में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाते हैं, और ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है कभी कभी, तो इस बात को ध्यान रखना है कि घर में बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उनको देना है ताकि वो अच्छे ढंग से ग्रो कर पाए और आपके साथ जुड़ पाए।
0: बहुत बहुत पॉजिटिव बातें आज यहां दोनों डॉक्टर्स ने बोली हैं, और बिल्कुल ये कार्यक्रम जो आप सुन रहे हैं तो मुझे लगता है जरूर आप इससे फायदा लेंगे, बहुत सारे श्रोता इससे फायदा लेंगे, उन बच्चों को भी फायदा मिलेगा जिनको उस प्यार, उस केयर, उस हमदर्दी तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैडम मुझे टोकेंगी, उनको प्यार की जरूरत है, उनको सपोर्ट की जरूरत है, उनको एक आम नागरिक को जैसे सारी चीजें चाहिए वो देने की जरूरत है। तो आप ये प्यार हमको भी देते रहिए, हमारे इस चैनल को देते रहिए, एफएम रेनबो को सुनते रहिए, और खासतौर पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुनते रहिए। तो मैं धन्यवाद दूंगी हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर शेफाली गुलाटी, ऑटिज्म एक्सपर्ट एंड चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, एम्स न्यू दिल्ली, योगेश कुमार सीनियर साइकोलॉजिस्ट, आप दोनों यहां आए, ऑटिज्म के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वीकार करिए मेरा भी नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में।

0: विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं। हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए, लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं।

0: परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में।
1: जी
0: वहाँ से भी एक एक एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊंगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
0: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं, लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए। तो ये बातचीत तो हुई थी, लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है, मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन चार तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी, लेकिन मेरी

0: माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडी की तरफ।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुंच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना।
0: वाह
1: अच्छा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना अपना प्यार कैसे बसाया?
0: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफ़ी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफ़ी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक ऑफिसर बन गया।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
0: देखो, जाना तो काफ़ी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन, कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता। तो काफ़ी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में, हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है। तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
1: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए स्कूल में काफी शैतानियां क्या करते थे?
0: हाँ यस, मेरा एक बड़ा भाई है, तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं काफ़ी शरारी था, मेरे मेरे 12th A की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th A वाला सुन रहा है, तो काफ़ी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए। कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफ़ी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: बरकरार है। अच्छा ये बताइए शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए, क्योंकि आर्मी का तो काम नहीं है या आर्म फोर्सेस का कि आपसे आप में से एक ऑफिसर बनाना है, लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार, तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: निश्चितानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोर्समेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
1: वाह क्या बात है, तब भी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
0: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया। देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की।

0: एकेडमी है, वहां से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में। मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी। और इमेजिन मेरा मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे। 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया। और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया और आगे मेरा मेरा सफर 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बन के पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहाँ ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोस्टमेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोस्टमेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह, क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया। मैं
1: आज बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: दो दिन तीन दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा,
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूं, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
1: ले जा ले, ग्रिल लगा ले।
0: 5 महीने का टर्म होता है, जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह, क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है,
0: मदद करती है।
1: आप
0: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएं होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
1: जी, कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत, बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती है कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
0: तो माँ के, जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई।
1: जी जी जी,
0: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। एंड हाँ। वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
1: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं।
1: हाँ।
0: जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
1: जी,
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोस्टमेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ ये कहूंगी मैं सोच है जिसके पास,

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने, कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना, तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे, मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का जो सफर है, सफर नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पोस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द इजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे

0: और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है। खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए। कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन। और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीजें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे। हमने तो कुछ दिमाग लगाया और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती। और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे उससे मेरे को जिंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
0: वाह क्या बात है। अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचाया जाए और आगे का कारवां आप ही की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने में कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई कैसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 1997 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी और आप उनके साथ कॉलेज में थे। आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही कोई भी चीज आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई, हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहां साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर लेता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूं, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लाटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं, और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या

और फिर आगे आगे ऐसे ऐसे करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या

0: यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को

0: मदद करता है।
1: जी जी निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी कुछ जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे उसमें काफी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूं, कॉरपोरेट में जैसी कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं।

0: आपको भी सेना को सशक्त करना है।
1: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था कि

0: मेरी शादी इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है। एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी। तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो। और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
1: सो स्वीट।
0: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अफसर था। वो शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
1: अच्छा।
0: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई। और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
1: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आप उनसे

0: और हम भी हरदम हर पल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूंगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। एनडीए में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ, मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं, मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा भी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट

0: इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है
1: जी।
0: मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूंगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती था, ब्रिगेडियर होती थे, जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
1: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप
0: आज की युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा
1: जी।
0: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
1: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहां उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुंचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम जरूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तंवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद जरूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तंवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आर के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए पेरिस में फ्रांस के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। श्री मोदी शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के सेंट गोबेन कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद वजीन से मुलाकात की। बैठक में विनिर्माण सामग्री और निर्माण क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सेंट गोबेन की मजबूत उपस्थिति और निवेश देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं। श्री मोदी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी CMA CGM ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

0: रोडल्फ सात से भी मुलाकात की। इस दौरान समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत में ग्रुप की मजबूत और बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। फ्रांस में भवन निर्माण की प्रमुख कंपनी सेंट गोबेन ने कहा है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन रहा है। पेरिस में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोवेद बजीन ने कहा कि चेन्नई के पास कंपनी की एक बड़ी विनिर्माण इकाई न केवल घरेलू मांग के साथ ही खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता से काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.

0: 47 crores deliveries की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
1: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,317 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। पिछले 3 दिनों में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर है। यह भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 22 और 23 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होंगे। ये दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर हो रहा है। भारत 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के अंतर्गत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 9:30 ग्रुप ए के मुकाबले में अमेरिका के अटलांटा में चेकिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। लॉस एंजलिस में रात्रि 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। आज सुबह कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आ चुकी है आपकी बहुत खास दोस्त, जी हाँ सीमा आपके साथ है और प्रोग्राम शुरू हो चुका है सिटी लाइट्स, और सिटी लाइट्स में बहुत स्वागत है आपका। इंतजार कर रहे थे ना? मैं भी बहुत इंतजार कर रही थी कि कब मिलेंगे, कब बातें करेंगे, क्या क्या बताना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं, और इतना सब कुछ होता है ना बताने के लिए, तो फिर ऐसा लगता है कहीं मुझसे कुछ छूट ना जाए। पर जनाब आप लोग हैं ना हमारे साथ, बोलने ही नहीं देते बिल्कुल भी हमें कुछ भी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बहुत ही सुंदर से गीत के साथ, और उसके साथ साथ इसके बाद ढेर सारी जानकारी आपके लिए खास। लेकिन हाँ, क्या करना है, बने रहना है, सुनते रहना है आपका अपना प्रोग्राम सिटी लाइट्स, आपके अपने, जी हाँ, FM रेनबो पर।

जी हाँ, नशा तो है, नशा है आपसे मुलाकात करने का, नशा तो है इस मोहब्बत का जो आपसे हो गई है। और इसी नशे के तहत, इस मोहब्बत के तहत हम और आप साथ साथ हैं। और इतनी सारी बातों में से अब शुरुआत कर देनी चाहिए सीमा मैडम को, है ना? क्योंकि भाई, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं और अभी नहीं बोले तो फिर लगेगा कि टाइम निकलता जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि लेडीज स्पेशल बसों में अब महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। आपको जानकर बहुत

बहुत खुशी होने वाली है कि अब दिल्ली में महिलाओं की सार्वजनिक परिवहन यात्रा और सुरक्षित बनाने के लिए लेडीज स्पेशल बसों में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। जी हां, बसों में महिला पुलिस कर्मियों की, इस बात पे गौर कीजिएगा। और डीटीसी ने ऐसे संवेदनशील मार्गों की पहचान की है जहां महिला यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है, और इन रास्तों पर संचालित लेडीज स्पेशल बसों में सुबह शाम महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, और हो सका जरूरत पड़ी तो महिला होमगार्ड मार्शलों की भी तैनाती की जा सकती है। है ना, कितनी बात है अच्छी। और वैसे ही यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी हम महसूस कर रहे हैं, मैं तो पढ़ते वक्त इतना सिक्योर महसूस कर रही हूँ। और साथ ही साथ आपको बता दूँ, और साथ ही साथ इस बस में एक पैनिक बटन जो लगा हुआ है, जो कि डायरेक्ट आपको कनेक्ट करेगा दिल्ली पुलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली से, जिसका नंबर है 112। जी हाँ, 112, जो कि आप अगर बस में हैं और आप अपने को कुछ इनसिक्योर फील कर रहे हैं या कोई आपको खतरा महसूस हो रहा है, तो आप सीधा पैनिक बटन का इस्तेमाल कीजिए, और जो कि आपकी सीधी कंप्लेंट जाएगी आपकी दिल्ली पुलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को। तो देखा ना कितनी अच्छी बात है, तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हमें खुशी इस बात की है कि लेडीज स्पेशल बसों में अब हमारी जो पुलिस है ना, वो भी लेडीज होगी, होमगार्ड भी लेडीज होंगे। हाय, कितना मजा आएगा ना। और अब नो डर, बिल्कुल, और बिंदास अब ट्रेवलिंग कीजिए। और सच में इश्क

वैसे पता है ये कब महसूस करते हैं कि तू मिले या सब मिले या? जब हम बिल्कुल फिट होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, जब एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती और पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं, तो बस

वैसे पता है ये कब महसूस करते हैं कि तू मिले या सब मिले या, जब हम बिल्कुल फिट होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, जब एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती और पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं, तो बस ऐसा ही लगता है कि तू मिले या सब मिले या, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है ना। जब हम सेहतमंद होते हैं, आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम बीमार होते हैं तो नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ रहती है, और इसी से बचने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि योग को अपनाएं। जी हाँ, योग को अपनाना है। और आप जैसे जानते हैं कि इस बार 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजधानी में कम से कम 29 स्थानों पर, 29 जगहों पर आप सामूहिक योग कर सकते हैं। और इस बार का जो योग दिवस का, हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। जी हाँ, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, देखो नाम से ही पता चल रहा है ना। और आज हम बात करने वाले हैं भुजंगासन के बारे में। जी हाँ, भुजंग आसन यानी कि सांप वाला आसन। जैसे सांप फुफकारते हुए ऊपर उठते हैं ना, उसी तरह से ये जो आसन होता है रीढ़ की हड्डी के लिए रामबाण होता है। भुजंगासन करने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि बस आपको क्या करना है कि मैट पर पेट के बल ले जाना है, पैर के पंजे जमीन पर, हाथ कंधे के नीचे, कोहनी मोड़कर, माथा जमीन पर, बिल्कुल सांप जैसे सो रहा हो। अब सांस अंदर भरो और धीरे धीरे छाती को ऊपर उठाओ। हाथ से प्रेशर नहीं देना है बिल्कुल भी, कमर से ऊपर वाला हिस्सा ही उठेगा, कोहनी हल्की मुड़ी रहेगी, गर्दन सीधी, ऊपर देखो। 15 से 30 सेकेंड तक रुको, नॉर्मल सांस उस वक्त लेते रहेंगे हम, साथ ही पेट जमीन पर लगा रहेगा। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, माथा जमीन पर रहेगा और बिल्कुल रिलैक्स। पता फिर क्या होगा आपको मैं बता दूं कि जितना भी आपका जो कमर का दर्द है ना, वो एकदम

गया, साथ ही पेट जमीन पर लगा रहेगा। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, माथा जमीन पर रहेगा और बिल्कुल रिलैक्स। पता फिर क्या होगा आपको, मैं बता दूं कि जितना भी आपका जो कमर का दर्द है ना, वो एकदम छूमंतर होने वाला है। रीढ़ की हड्डी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी लचीली हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, पेट की चर्बी कम होगी, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है और सबसे

अगर आपको स्लिप डिस्क की कोई प्रॉब्लम है तो आप नहीं कीजिएगा, और बिल्कुल धीरे धीरे कीजिएगा, झटके से बिल्कुल नहीं कीजिएगा, तो है ना बात। और जब हमारी सेहत अच्छी होती है ना तो सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है ना। तो चलिए, सेहत भी अच्छी कर दी है आपकी, भुजंगासन भी आपको करा दिया, और आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक दिन में कम से कम 5 बार इसे करें, 30 सेकेंड्स रुक कर होल्ड कर, फिर आप एक हफ्ते में अपने अंदर खुद ही आप चेंज

हेड हैं उन्होंने बताया है हमें इस बारे में कि यहाँ पर कम से कम 8 बहुत भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में, और एक वर्ष का प्रमाण पत्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाने वाले हैं। और इसमें अगर बात करें तो जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटाली, पुर्तगाली, चीनी, जापानी और कोरियाई भाषाएं शामिल है। जी हाँ, आप विदेशी भाषा भी यहाँ पर आप 1 ईयर का कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। तो 17 जून से यानी 818 है।

जी हाँ, पापा तो कहते हैं बड़ा नाम करेगा हमारा बच्चा, लेकिन बच्चे के हाथ से मोबाइल कहाँ हट रहा है। मोबाइल हटेगा तभी वो दिमाग लेगा ना पढ़ाई में, है ना। तो चलिए, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, आप बहुत समझदार हैं, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे करनी है, ये तो सब आपको बता देती हूँ। फिलहाल आप अपना मोबाइल साइड में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, और बंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पढ़ते टाइम, ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पास ये है कि फिलहाल कुछ समय के लिए मोबाइल में जो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम था ना, वो ज़रूर बंद कर दिया गया है। आपने नोटिस किया होगा कुछ समय से कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को चेतावनी देने के लिए मोबाइल पर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है, जो कि कई दिनों से हम देख रहे थे चल रहा था। और जैसे ही तेज़ हवा, तूफान या तेज़ बारिश, जैसा भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती थी, उस टाइम ये अलर्ट हमें इंडिकेट कर देता था कि आप सावधान हो जाइए। जी हाँ, और ख़ास तौर पे इस सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए हम मूसलाधार बारिश, आंधी, तूफान, सुनामी और अन्य आपदाओं के बारे में पहले से ही पता लगा लेते थे। मोबाइल फ़ोन पर तेज़ आवाज़ के साथ चेतावनी संदेश भेजे जाते थे। जी हाँ, और आपको खास बात ये थी इसकी कि ये संदेश बिना किसी इंटरनेट के मोबाइल तक पहुँच जाते थे। लेकिन कुछ दिनों के लिए ये सुविधा अभी बंद कर दी गई है, क्योंकि कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं। जैसे ही कुछ चेंजेस हो जाएंगे इसमें, तो फिर वापस इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए, इसके लिए तो मोबाइल में जो इमरजेंसी सिस्टम था वो तो हमने अलर्ट को अभी थोड़े दिनों के लिए बंद किया हुआ है, लेकिन आपने पढ़ते टाइम क्या मोबाइल को बंद किया? नहीं किया, नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम मौसम की बात कर रहे थे अभी अभी, है ना, कि मौसम में अगर तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, तो ये अलर्ट हमें बता देता है। लेकिन कहाँ आ रही है बारिश, कहाँ आ रही है बारिश, ये क्यों नहीं आ रही है बारिश, पता नहीं कब आई, है ना। तो चलिए अभी आपको बता देती हूँ कि दिल्ली वालों को अभी ज़्यादा खुश होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगले 4 दिनों तक तेज़ गर्मी रहने वाली है, पता है, तेज़ गर्मी। और कहा जा रहा है कि मौसम विभाग का अनुमान ये भी है कि रविवार तक की बादलों की जो आवाजाही है, अभी मैं देख रही थी दिन में धूप थी, फिर थोड़ी थोड़ी छाया आ गई, जो आंख में चौनी चल रही थी ना वो चलती रहेगी, कुछ हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी और तेज़ हवाएं भी चले, तो इससे थोड़ा सा टेम्परेचर तो हमारा नीचे आएगा, लेकिन बारिश की बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो, लेकिन जो हमारे गाने हैं ना, हमारे सुंदर सुंदर गाने, हमारे सुंदर सुंदर प्रोग्राम्स, ये आपको ज़रूर गर्मी से राहत पहुंचाते रहेंगे और जो सुकून है ना दिल को, ज़रूर देते रहेंगे। तो इसी तरीके से सुनते रहिए आपका अपना खास प्रोग्राम सिटी लाइट्स, आप ही अपनी सीमा के साथ।

0: सारी जिंदगी तेनों तकदा रहूं ये तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ सुनता रहूं ये जरूर हो सकता है ना। प्रोग्राम सुन रहे हैं सिटी लाइट, सो लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होती हूँ।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इन
6: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
8: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
9: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने को

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, और मैंने कहा था ना कि मेरे पास तो बहुत सारी खबरें हैं, मुझे लग रहा है कि खबरों में मैं ये बहुत ज़रूरी बात ना भूल जाऊँ। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन्हें घूमने फिरने का बड़ा मन करता है, पैर ही नहीं टिकते घर पे, मन कहता है बस कभी यहाँ निकलूँ कभी वहाँ निकलूँ, तो उन लोगों के लिए खास बात है मेरे पास। जी हाँ, अगर आप आर्ट गैलरी इन सब के आपको बहुत शौक है, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, आर्ट में, फैशन में, होम मेड का जो फ्ले है उसमें अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, तो आपको मैं बता दूँ कि 18 जून यानी कि आज सुबह 11 बजे से 7 बजे तक चल रहा है, ये आज लास्ट डेट है और पता है 6 बजने वाले हैं और 7 बजे तक ये चलेगा। अगर आपको मन है, अगर आप ऑन द वे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, आगा खां हॉल, भगवान दास मंडी हाउस, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आर्ट फैशन होममेड का फ्री। जी हाँ, टिकट बिल्कुल फ्री है। और अगर आप बाई मेट्रो जाना चाहते हैं तो मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पे आप उतर कर वहाँ से आप आर्ट गैलरी का ये जो लुत्फ है उठा सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास एक और भी चीज़ है बताने के लिए आपके पास, बताऊँ क्या? अगर आप कोरियन कल्चर के भी दीवाने हैं, वैसे अगर हम जेंजीज की बात करते हैं तो कोरियन कल्चर तो भाई सर चढ़ के बोलता है, तो अगर हम कोरियन कल्चर से भी आप रिलेट करते हैं खुद को, तो आपको बता दूं कोरियन आर्ट एग्जीबिशन 16 जून से 19 अगस्त तक सुबह 10 बजे से 6 बजे तक चल रहा है, और ये है कोरियन कल्चर कल्चरल सेंटर लाजपत नगर 4 में। और अगर आप मेट्रो से जाएंगे तो मूलचंद वॉयलेट लाइन आप यहाँ पर ले लीजिएगा, और टिकट बिल्कुल फ्री है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस तो हैं आपके पास घूमने फिरने के, अगर आप आर्ट के दीवाने हैं और कला के प्रेमी हैं, और अगर आपको पिकनिक करने का मन कर रहा है, अगर आपको मन कर रहा है कि मैं बस शांति से जाऊं कहीं पे बैठूं, चारों तरफ ग्रीनरी हो, और ऐसे में आपको बताऊं पिकनिक के लिए अब पहली पसंद बन रहे हैं यमुना किनारे के बनाए गए पार्क। जी हाँ, उन पार्कों में मैं बता दूँ आपको, लोधी गार्डन की अगर मैं बात करूँ, लोधी गार्डन है, असिता पार्क है, बांसीरा पार्क है, और इनकी अपनी अपनी खास बात है। पता है जो लोधी गार्डन है, मनमोहक स्थान है एक, यहाँ पे लोग शांत वातावरण में पिकनिक मनाने के साथ साथ किताब पढ़ने के लिए भी यहाँ पहुँच रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे एक ऐतिहासिक स्मारक भी देख सकते हैं आप। और बुधवार को यहाँ पर आप देख सकते हैं, खासतौर पे बुधवार क्यों कह रही हूँ, रोज़ ही देख सकते हो आप यहाँ पे परिवार बच्चों के साथ पिकनिक मनाते हुए, और यहाँ पे बड़ा समय बिताने के लिए अगर आप परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। इसके साथ साथ आपको असिता पार्क में भी आप ग्रीनरी देखने के लिए, वॉकिंग ट्रैक और नदी किनारे का शांत वातावरण देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही साथ आप नदी में अटखेलियाँ करते हुए पक्षियों को भी यहाँ देख सकते हैं। और धीरे धीरे मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, दिन पर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और यहाँ का जो टाइमिंग्स है वो भी मैं बताती हूँ, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक ये असिता पार्क खुला रहता है, और अगर लोधी गार्डन की मैं बात करूँ, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ये खुलता है। और अगर हम बात करें बांसीरा पार्क की, तो यहाँ का जो म्यूजिकल फाउंटेन है ये भी अपनी तरफ खींच रहा है अपने को। जी हाँ, अगर आप यमुना किनारे आराम करना चाहते हैं, सैर करना चाहते हैं, पिकनिक का सुखद अनुभव लेना चाहते हैं, हरियाली देखना चाहते हैं, झील देखना चाहते हैं, बच्चों के लिए यहाँ झूले भी हैं, म्यूजिकल फाउंटेन शो भी यहाँ का बहुत बड़ा आकर्षण है। तो अगर शाम को आप टाइम बिताना चाहते हैं किसी के साथ, किसी अपने के साथ, तो बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके पास, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक। और इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सरायकालिका है, तो रंग बिरंगी रोशनी और संगीत के साथ होने वाला ये शो भी सभी को बहुत पसंद आ रहा है। तो मैंने बहुत सारी आज ना आपको ऑप्शंस दी हैं, जाना है, सुनना नहीं है, सिर्फ जाना है, घूम के आना है,

और पता है कुछ ही दिनों में मैंगो फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है, बताऊंगी उसके बारे में भी, वो बहुत सारी चीज़ें बतानी है। प्रोग्राम सुन रहे हैं सिटी लाइट्स सीमा के साथ।

जी हाँ, मेरी जिंदगी है तू। और कौन होते हैं ये हमारे जो जिंदगी बन जाते हैं? कौन होते हैं, है ना? न जाने कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, और इतनी मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत हमें सिखा के जाते हैं, और पता ही नहीं चलता है कि इनके बगैर हम जीना भूल ही जाते हैं, है ना? तो कुछ खास होते हैं हमारी लाइफ में, हमारी अपनी, तो उन अपनों को ना संभाल के रखना होता है। जी हाँ, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, उनका ध्यान रखना होता है ना, प्यार से। तो वही हमारी जिंदगी होते हैं, दिल के किसी कोने में खास जगह बनाए रहते हैं। आप चाहे कहीं भी हो, वो आपके साथ साथ

एक प्रोग्राम के साथ आप जुड़ते हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल से और इस वक्त जुड़े हुए हैं सिटी लाइट्स से। और अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा ना कि आज मेरे पास ना एजुकेशन रिलेटेड बड़ी सारी जानकारियां हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप भी जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSSB ने कई पदों पर अभी जो भर्तियां हैं निकाली हुई हैं। हम इसमें विभिन्न प्रकार की पद उनकी बात कर रहे हैं, भर्तियों की बात कर रहे हैं, पदों की बात कर रहे हैं। और इन पदों पर 15 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं, जी हाँ। और आप उस पर साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है और क्या आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सब आपको जानकारी मिल जाएगी उसकी वेबसाइट पे। तो आपको बता दें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो DSSSB.delhi.gov.in पर आप जाकर आप सारी वैकेंसीज और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो रिलेटेड हुई आपके DSSB से। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, UPSC की भी हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर की भी हमारे पास वैकेंसी है और इसके लिए भी हमारे पास एडवर्टीजमेंट आ चुकी है और 538 यहाँ पर वैकेंसीज हैं और इसके लिए 3 जुलाई जो है आप लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए। अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और जानकारी ले सकते हैं आप upsc.gov.in से। और इसी के साथ एक और SSC में भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 के लिए आवेदन जारी कर दिए गए हैं, जी हाँ। और यहाँ पर लगभग 12,000 पद हैं और जो इसकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 22 जून और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है ssc.gov.in पर लॉग इन करें और सारी जानकारी ले लें। तो अब मैंने आपको बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में भी बताया है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया है और अभी थोड़ा सा टाइम और है, जी हाँ 5:54 हो गए, पता नहीं कहाँ चला जाता है टाइम। जब मैं घर पे होती ना, 1 घंटा काटना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आई हूँ ना, पता ही नहीं चला कब 6 बजने वाले हैं। है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। आपके लिए ले आऊँ ना फलक से सितारे तोड़कर।

जी हाँ, इश्क हुआ और इस इश्क के साथ, इस मोहब्बत के साथ मुझे तो जाना होगा, है ना, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम जो रहेगा हमारा गीतांजलि के साथ रहेगा और गीतांजलि लेकर आएंगी आपके लिए मिसेज मसाला मिक्स। और मैं जल्दी से आपको एक और बात बता देती हूँ कि बहुत जल्द आने वाले समय में यमुना पार से मध्य दिल्ली वो नई दिल्ली के बीच सफ़र और आसान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने क्या क्या है, चंदगी राम अखाड़ा और लोहा पुल के पास दो नए पुल बनाने की योजना बना दी है। और इसके साथ साथ आपको बता दूँ कि इससे क्या होगा कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के कनॉट प्लेस, मध्य दिल्ली के अन्य भागों में आना जाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। हाँ, पता है बोलना तो बहुत कुछ है बोलना तो बहुत है लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। जी हाँ, तो प्रोग्राम सिटी लाइट से लेती हूँ इजाजत, फिर मुलाकात करूंगी बहुत जल्द। बस अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, यूं ही सुनते रहिएगा और इजाजत दीजिएगा सीमा को आपकी अपनी। जी हाँ, फिर मुलाकात करूंगी। टाटा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंट कोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition

0: of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
2: रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूं नीरजा आपके साथ। नमस्कार श्रोताओं, और कैसे हैं आप? जरूर आप बहुत अच्छे होंगे और आप हमारे साथ भी होंगे। और आज एक ऐसा खास कार्यक्रम जो शाम को आता है अपने लिसनर्स के लिए ही, मैसेज मसाला मिक्स। और आज जिस विषय के साथ मैं आपसे जुड़ रही हूं वो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हमारे अनुभव की कीमत। कहते हैं उम्मीद हमको चलना सिखाती है, लेकिन अनुभव हमें मंजिल तक पहुंचाता है। तो बताइए ना कि वो जिंदगी का कौन सा अनुभव है जिसने आपकी सोच, आपकी राह और आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो हमें मैसेज करने के लिए आपको करना है व्हाट्सएप, और हमारा नंबर है 9868107070, बिल्कुल 9868107070। इसी नंबर पर आपकी नीरजा आपके संदेश का इंतजार कर रही है। जुड़ जाइए और जुड़े रहिएगा। और लिखकर बहुत कुछ कहना है, बाकी हम सब समझदार हैं। शान और साधना सरगम की आवाज में ये ट्रैक सिर्फ आपके लिए।

हम तुम बने रहेंगे साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम में, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त नीरजा, और प्रोग्राम लेकर आई हूँ मैसेज मसाला मिक्स। और आज जिस विषय से आपसे जुड़ी हूँ वो है जिंदगी की उम्मीद, जो हमें चलना सिखाती है लेकिन अनुभव मंजिल तक पहुंच जाता है। क्या कहना है आपका? हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं। मोहम्मद सरफराज आलम हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं और कहते हैं, नीरजा जी नमस्कार, मेरी जिंदगी को बदलने वाला सबसे बड़ा अनुभव यह रहा कि मैंने छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया है, ठोकरों और असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखना शुरू कर दिया है। समय ने सिखाया है कि हर हार एक नई सीख लेकर आती है और हर मुश्किल इंसान को पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। कितने खूबसूरत संदेश के साथ हमने आज की शुरुआत की है, लाजवाब संदेश है दोस्त, और ढेर सारे मैसेजेस आ गए हैं। नीरजा बेटी नमस्कार और आशीर्वाद। मेरा अनुभव जीवन में आया टर्निंग जब 45 वर्ष में वित्तीय गोल्डन ऑफर VRS नौकरी से 2003 में ही मैंने VRS ले लिया। यह निर्णय मेरे लिए फायदे वाला सिद्ध हुआ और फिर दूसरी जगह नौकरी 61 वर्ष तक मैंने पूरी की, और आज उस टर्निंग पॉइंट और उसके बाद धैर्य भरोसा रखकर अच्छा वक्त काटा, और यह मेरा अनुभव मुझे प्रेरणा देता है, खतरों से फर्क नहीं लड़कर भविष्य के लिए जीतना अच्छा होता है। अनिल शर्मा जी सरिता विहार से हमें ये बात समझा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें हौसला भी दे रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए कई बार निर्णय ले लिए जाते हैं और उसके बाद बड़ा सुखद लगता है, और लेते वक्त ज़रूर थोड़ा सा असमंजस रहता है। अंशी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं हस्तिनापुर मेरठ से, और कहती हैं, मैं इस विषय पर यही कहना चाहूंगी कि मैम जब बात एक्सपीरियंस की आती है तो लाइफ, तो मैंने अक्सर नोटिस किया है कि कम उम्र में मिले कुछ एक्सपीरियंसेस इंसान को आगे बढ़ने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख जाते हैं और कुछ लोग हमें सिखा कर भी जाते हैं। सच में अंशी, ये बात तो सच है कि हर बार हार जो है ना वो कुछ सिखा के जाती है, इसलिए या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। मुझे लगता है इस हार शब्द को हमें हटा देना चाहिए। बड़े दूर से हमारे पास संदेश आया है ऑस्ट्रेलिया से, जोया मेलबर्न में है और कहती हैं कि आज मैं यही कहना चाहूंगी कि माय फादर यूज्ड टू टेक द होल फैमिली टू सिनेमाज, आई वॉच्ड मूवी डर एंड DDLJ, आई कुडंट फोकस ऑन एक्टर्स बट द सीनरी बिहाइंड, आई नोटिस्ड ओवरसीज कंट्रीज आर मोर, इनको बहुत अच्छा लगा और लगा कि उसकी खूबसूरती बड़ी अच्छी है, हेयर आई एम वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छा है जोया, और जब वक्त मिले भारत आना और भारत के नज़ारों को भी देखना बहुत अच्छा लगेगा।

भाई ये बात तो सच है, लड़कियां लड़कों से नहीं होती, लेकिन लड़के भी लड़कियों से नहीं होते, इसीलिए लड़कों को लड़कियां और लड़कियों को लड़के अच्छे लगते हैं शायद, है ना। मोहम्मद सरफराज आलम हमें कहते हैं कि जिंदगी बदलने वाला अनुभव, छोटी छोटी बातों में मैं उलझा रहता हूँ, हर ताने और हर गम को दिल से सहता हूँ, फिर ठोकरों ने आकर मुझको ये समझाया, गिरना कोई हार नहीं उठना भी सिखलाया, असफलताओं की धूप में जब जब मैं जलता गया, हर दर्द के साथ मगर थोड़ा और निखरता गया, अब छोटी बातों को मैं मुस्कुराकर टाल देता हूँ, हर मुश्किल के आगे भी हिम्मत संभाल लेता हूँ, जिंदगी ने बस इतना अनमोल सबक दिया, ठोकरों को गुरु मानो, मंजिल का रास्ता मिल गया, क्या बात है। और दोस्त मुझे भी अपना अगला गाना मिल गया है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा संदेश ले लेती हूँ। संजय हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं और कहते हैं कि मैं नियमित श्रोता हूँ और 6 से 7 तो मैं भाई कहीं नहीं जाता, प्रोग्राम जरूर सुनता हूँ। जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो मैं और उन इस पर डिपेंडेंट हो गया, और तब एक व्यक्ति ने कहा अपना काम स्वयं करो और स्वयं करने से यही होगा, तब से आज तक मैंने इस बात को पकड़ लिया और मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा। फिलहाल अगला ट्रैक आपके नाम करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी में वो खूबसूरत से नज़ारे जो हमें मिल जाते हैं, हमें उनकी कद्र नहीं होती, लेकिन अगर होती है तो ये बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल आपकी उम्मीद आपको किस अनुभव से जोड़ गई बताना जरूर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो पर है नीरजा आपके साथ लेकर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और आज जिस विषय से हम जुड़े हैं वो यही कहता है कि उम्मीद रास्ता दिखाती है लेकिन अनुभव उस रास्ते पर चलने का हुनर देता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव आया जिसने आपको भीतर से बदल दिया? अगर बदल दिया है तो दोस्त अपना अनुभव ज़रूर साझा कीजिए और वो तकनीक वो ऊर्जा कैसे आती है वो हमारे साथ भी शेयर कीजिए। और हमारे साथ साझा करने के लिए नंबर है 9868107070, यानी व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें 9868107070 पर। और देखते हैं अगला मैसेज किसका आया है। किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु हमारे साथ, किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से जुड़े हैं और कहते हैं कि भाई हमें ना रेनबो पर आकर गाने सुनना बिल्कुल लाजवाब लगता है और सच कहूँ तो ये अनुभव ही कुछ कम नहीं है। और हमारी अटेंडेंस लगा दीजिए, बिल्कुल अटेंडेंस लग गई है दोस्त। और बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप जुड़ते हैं और इस जुड़ने के महत्व को हमारे बीच रखते हैं। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि सारा दिन ना एफएम रेनबो को सुनने में ही बीत जाता है। मुझे लगता है ये अनुभव अपने आप

में अनोखा है। दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। हाय नीचा मैम, नमस्कार। और किसकी जय बता रहे हैं आप, ये तो मुझे नहीं समझ आया, लेकिन हाँ कहते हैं मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। और कैसे बदला है दोस्त, सादगी से बदला है या किस वजह से बदला है, ये हमें ज़रूर बताना। और ज़िंदगी बदलने का जब हम ये अनुभव करते हैं ना, ये अलग ही होता है। प्रदीप सलूजा हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सलूजा जी ये जो आपने संदेश भेजा है ना, इसमें हमें वीडियो ऑडियो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ लिख कर भेजेंगे तो ज़रूर हमें भी अच्छा लगेगा। और साथियों अगर मैसेज कर रहे हैं तो प्लीज विषय से जुड़ा हुआ ही कीजिए, नहीं तो फिर कितनी दिक्कत हो जाएगी ना आपकी नीरजा को, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे हीरा मणि वर्मा हमारे साथ भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और कहते हैं वही विषय नहीं सुन पाया मैं, लेकिन दोस्त मुझे लगता है कि अब जरूर सुन लिया होगा, लेकिन अब आपने कहा है तो आपकी नीरजा आपके लिए दोहराएगी जरूर। मैं यही कह रही थी कि कभी किसी की एक बात, कभी किसी की चुप्पी और कभी छोटी सी घटना हमारी सोच को एक नया आकार दे देती है। आपका वह पल कौन सा है जिसने सब कुछ बदल दिया और वो जो एक पल था वो एक नया अनुभव दे गया। इसी विषय पर आपकी राय मैं जानना चाह रही थी। राकेश ठाकुर मोहन गार्डन उत्तम नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं लाइफ में मेरा अनुभव तो कम ही है, बट मेरे भैया का अनुभव मेरे लिए लाइफ लाइन साबित हुआ है। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए दिल्ली आया था, बट मैं यहाँ के मैं यहाँ के जो तालमेल है उसमें भटक सा गया था, लेकिन जॉब करने की सोची तो थी। भैया को जब पता चला, मुझे बहुत डांट लगाई और अपने एम्बिशन के लिए मोटिवेट भी किया, और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। सो थैंक्स टू भैया और उनका अनुभव, क्या बात है। इसीलिए ना परिवार की एक अलग ही कीमत होती है और घर के हर फैमिली मेंबर का ना आपकी ज़िंदगी में अलग ही रोल होता है। तो कई बार छोटी छोटी बातों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी चीज़ें हैं ना वो उनके साथ से ही हो पाती हैं। और आपने अपने भैया की बात की ना, मुझे भी अपना भैया याद आ गया, और उसने बहुत कुछ किया है वो भी मुझे याद रहता है। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से जुड़े हैं हमारे साथ और कहते हैं कि आदमी की नियत तो कभी भी बदल सकती है, इसलिए मैं ऐसी व्यवस्था करके रखता हूँ कि विकट परिस्थितियों में यदि मेरा साथ कोई ना भी दे तो मुझे दिक्कत ना हो। यानी कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखते हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद। हर्षदा म्यूनिक जर्मनी से हमारे साथ जुड़ी हैं और हर्षदा बहुत बहुत धन्यवाद, जब हिंदी के कार्यक्रम में आप हिंदी में संदेश लिखकर भेजती हैं ना तो दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन बाग बाग हो जाता है। आगे लिखा है कि ये सच ही है कि अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। बहुत सी चीज़ें हम सुनते हैं जो कहा जाता है कि ये भी होता है, ऐसा भी होता है, वो तभी समझ में आता है जब अपने साथ वो क्रम होता है, और तभी वो बहुत कुछ सिखा भी जाता है। और जो अनुभव हम ले लेते हैं या भगवान हमें जो अनुभवों से गुजरवाते हैं, वो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए, हमारे मन से मजबूत बनाने के लिए ही होता है हमेशा। सच कह रही हो हर्षदा, समझ आए या ना आए, समझ आ जाए या कुछ पल बाद आए, लेकिन हर अनुभव हमारी ज़िंदगी में एक नया दिशा ही देता है। तो ये गाना मैं आप ही के नाम करती हूँ। आप इतनी दूर बैठकर भी अपने दिल में भारत को रखती हैं, बहुत अच्छा लगता है हर्षदा, थैंक यू। और सभी साथियों से अनुरोध करूंगी कि मैसेज जरूर कीजिए और मैसेज हिंदी में ही कीजिए। और प्यार का वो रंग आपके नाम करती हूँ जो बिल्कुल सुर्ख है।

हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कस्बा बलरामपुर से इरशाद अहमद शाह और बेगम मरियम हमें कह रहे हैं और कहते हैं ये अनुभव भी बहुत अच्छा है। और जोया को जो मेलबर्न में है उन्हें वो पोयम और शायरी बहुत अच्छी लगी जो मोहम्मद सरफराज जी ने लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और महेश बोहरा अजमेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं जिंदगी सुख दुख सफलता सफलता और अनुभवों का खूबसूरत संगम होता है, यह कोई पहेली नहीं बल्कि जीने और अनुभव करने का सफर होता है। इसलिए मैं बीती बातों को भूलकर और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर आज के पल में ही जीने में भरोसा रखता हूँ और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अपने अनुभवों को ही प्राथमिकता देता हूँ। और धीरे धीरे से हम आपकी ओर बढ़ रहे हैं। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में ये गाना जो शब्द बहुत प्यारे रखता है और जज्बात भी। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत प्यार से चलाना, घर पर बहुत सारे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी रेनबो पर आपकी नीरजा है आपके साथ लेकर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और जहां बात हो रही है उस एहसास की कि हो सकता है कभी कोई असफलता मिल गई हो जिंदगी में, और शायद कोई ऐसा मौका भी आया हो जिसे आपने खो दिया हो और फिर उससे जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया हो, इसी विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं वही हम जानना चाहते हैं। उम्मीद से अनुभव तक की कहानी और कविता देवभूमि उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी हैं और कहती हैं अभी चार धाम की यात्रा चल रही है और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने तीर्थ

वालों को उनकी स्वच्छता का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है, और बड़े भाग्यशाली हैं हम भारतीय कि हमें ऐसी ऐसी जगह मिली है जहाँ जाकर हम प्रकृति की गोद में आनंद उठाते हैं, तो फिर इस आनंद में अपनी जिम्मेदारी ना भूल जाएं, ऐसा कविता कहती हैं। थैंक यू कविता, बहुत ही अच्छे सुझाव के लिए। अरुण कुमार हमारे साथ बठिंडा से जुड़े हैं और कहते हैं, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ कि आप सब हैं ना मेरे साथ। और कहते हैं, आज का विषय मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपने जीवन में 2 बार डिप्रेशन एंजाइटी वाले लो टाइम से गुजर कर देखा है, लेकिन उसको पार कर चुका हूँ और अब मैं उस समय को बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। हंसती मुस्कुराती हुई जिंदगी आगे बढ़ रही है। ओह क्या बात है, बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा। और पूछ रहे हैं आप लोगों का फीडबैक कैसा है। दोस्त सबका एक जैसा ही है, कभी ना कभी हम सब इस अनुभव से जुड़े हैं और गुजरे हैं, और कहीं ना कहीं फिर से आकर एक बार जिंदगी की रफ्तार पकड़ी है। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा जज्बा तो यहाँ जब इस मंच पर आती हूँ ना और आपसे जुड़ती हूँ, तो सच में लगता है अपने उन दोस्तों को जो कहीं दूर हो गए हैं वो इस मंच पर आकर जुड़ जाते हैं, मुझसे मिल जाते हैं, और मुझे लगता है कि हाँ वही चीज़ें हैं जो मैं छू रही हूँ और कहीं ना कहीं उनके दिल तक पहुँच रही हूँ। और अगला मैसेज हमारे पास GV दिल्ली से आया है, कहते हैं, सीताराम हनुमान, अनुभव कोई किसी का नहीं होता, अपने लिए खुद जीना होता है। क्या बात है, बिल्कुल सीधे साधे सरल शब्दों में अपनी बात कह गए आप। और पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, निजी कारणवश आज हम फिर से ये पूछना भूल गए, ये सुनना भूल गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये कार्यक्रम हमारा अपना है। बिल्कुल यही बात है कि आपने अनुभव को आगे रख लिया और जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार नीरा, कार्यक्रम से जुड़ चुका हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। भेरूलाल वाक दरिया धाकड़ उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और कहते हैं, किसी की चुप्पी में गहरी बात छुपी होती है, हम चाहे तो उसके चेहरे को पढ़ सकते हैं। गीत में इसी तरह पूछा भी गया था कि छुप छुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है। जी पहली मुलाकात है, मुझे याद आ गया। अनिल जी का मैसेज आया है, जाग जाओ जवानों उस तरफ हो जाओ, जाग जाओ मेहनत कश बस्तियों में जाओ, जवानी उम्र कुछ करके कमाने बचाने की है, देर नहीं वरिष्ठ उम्र पहुंचने तक कुछ काम करो। क्या बात है, बिल्कुल। एक तो सरिता विहार से आप जुड़ते हैं, बिल्कुल आपके दिल में भी वो सरिता बहती है जो कहीं ना कहीं हमारे साथ बिल्कुल जुड़ी रहती है। अनिल जी, अगला मैसेज हमारे पास जनकपुरी से आया है और प्रदीप सलूजा जी कहते हैं, बहुत जल्दी से विश्वास कर लेता था मैं और मुझे बहुत धोखा मिला है, अब बंदे पर अच्छी तरह से परख कर विश्वास करता हूँ। और सच बताऊँ प्रदीप जी, वैसे तो आपका नाम ही प्रदीप है, आपने उजाला कर ही दिया है, लेकिन ये जो हम धोखा खाते हैं ना, हम धोखा नहीं खाते, ये हमारा विश्वास है। अपने विश्वास को मुझे लगता है हमें जिंदा रखना चाहिए, हमारी सच्चाई है ना, वही हमारी ताकत है, बाकी सब सामने वाले पर है।

तो आपसे हो गई है ना, इसीलिए मैसेज नहीं छोड़ पाती। विकास दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं, कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी, हर दिन कुछ सिखा के गुजरता है, गलतियों से ही बेहतर करने का अनुभव होता है, मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर लर्निंग।

सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से जुड़े हैं और कहते हैं अपनी गलतियों से सीखना जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जिंदगी में चलते रहो या तो मंजिल मिल जाएगी और या फिर अनुभव, दोनों ही अच्छे होते हैं। क्या बात है, लग गई आपसे प्रीता।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
2: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
1: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
2: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
1: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स, जहां बातें बिल्कुल आपके दिल की हमारे दिल तक आ रही हैं। भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे हालचाल पूछ रहे हैं। भाई मैं अशोक जी भुवनेश जी बहुत बढ़िया हूं और बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से हमसे जुड़ जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बारे में कहते हैं। कि यही कहना चाहता हूँ कि पहले मैं अपनी प्रॉब्लम को अपने दिल में ही रखता था, किसी से कहता नहीं था, जिससे मेरी टेंशन और हमेशा टेंशन में रहता था। और लेकिन फिर मैंने कहीं सुना था कि अपनी प्रॉब्लम को बताओ, तब से मैंने अपनी प्रॉब्लम को बताया और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिससे मैं बहुत मुझे हेल्प मिली है। भुवनेश जी, ये आपकी बात है ना, वो सबको सुननी चाहिए, हमारे सभी दोस्तों को, क्योंकि मन में रखते हैं और ना जाने सोच सोच कर उस छोटी सी बात को कितना बड़ा कर लेते हैं और बात कहीं से कहीं पहुँच जाती है। फिलहाल मैं हूँ आपके साथ नीरजा और एक ऐसे तराने के साथ जुड़ूंगी जो बिल्कुल हमें ज़िंदगी में भी देगा। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही बदस्तूर चलता रहेगा। 7 बजे होंगे हिंदी में समाचार, 7:05 पर कार्यक्रम होगा वेस्टर्न म्यूजिक का, शुभांकर होंगे हमारे साथ। 8 बजे म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से मैं आपके बीच आ जाऊंगी और 9:00 आपकी याद आती रही ताहिर हसन लेकर हमारे बीच होंगे। और फिलहाल आपके मैसेजेस हैं मेरे पास जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, इसीलिए

ले रही हूँ आपके संदेश। और अगला मैसेज हमारे पास है जिला मुरादापुर ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। क्या बात है। और कहते हैं मैं भी एक कदम अच्छा हूँ, एकदम अच्छा हूँ। और रोज मेरा परिवार इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं और हम सब की आवाज़ पहचानते हैं और ये अनुभव अनूठा है। और सच में आपका संदेश पढ़ना भी ना हर बार कुछ अलग ही हो जाता है। अगला संदेश हमारे पास आया है राजेश भल्ला जी का, और कहते हैं कि मौन खाली नहीं होता, जवाबों से भरा होता है। बिल्कुल, लेकिन वो जवाब हम तक कैसे पहुंचेगा जब तक आप कहेंगे नहीं, है ना। यही हम अपने उन दोस्तों को कहना चाहते हैं जो सोचते बहुत कुछ हैं मगर बांट नहीं पाते। और अगला संदेश हमारे पास है रामशरण विश्वकर्मा जी का, और कहते हैं हम भी जुड़ गए हैं दोस्त, और हमारा ये जुड़ना ही हमारा अनुभव है। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। और ज़रूरी नहीं कि आरंभिक पड़ाव में ही हमें किसी कार्य को करने में सफलता मिले। हमारा अनुभव यही कहता है कि असफलता मिलने पर भी उस कार्य को जब हमने फिर से पूरा करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से सफलता मिली है, भले ही उस सफलता में थोड़ा समय लग गया हो। तो मैं अपने उन्हीं सभी श्रोताओं को यही कहना चाहती हूँ कि दिल से कोशिश कीजिए, आपकी कोशिश कभी भी छोटी नहीं होगी, और आपके सामने वाले आपकी उस बात का आदर भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे। जिंदगी का हर पल बहुत जरूरी है, तो पूरा भरपूर जिए।

आकाशवाणी रेनबो पर आपकी नीरज आपसे यही कहना चाहती है कि हर पल जीना है, तो इसी के साथ ले रही हूँ इजाजत, लेकिन 8 बजे फिर से हाजिर हो जाऊंगी म्यूजिक मस्ती लेकर। फिलहाल नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं, वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोबरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
0: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
0: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: Welcome back, everyone. You're listening to Hits and Memories. The songs up next make the summer heat feel even hotter. These songs were made with passion, love, heartache, and yearning. And each time when you listen to these tracks, they send us back to the time when we discovered them for the first time. So let's start with one of the biggest love ballads of all time. Here's Everything I Do, I Do It For You by Bryan Adams.

0: So that was Sound of Thunder by Duran Duran. And given the heat which we are experiencing, we are also awaiting a Sound of Thunder. This track truly encapsulates that 80s new wave music sound. You can hear those dreamy synths, those pulsating drums, and an effortlessly groovy bass line. Truly an earworm of a track. Well, it's time for another short break, dear listeners, but don't you touch that dial, because some of the finest tunes of all time are awaiting you on the other side. You're listening to Hits and Memories.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: Welcome back everyone to Hits and Memories only on Akashwani Rainbow 102.6 MHz. Before we move into our next set of songs, dear listeners, we would love to invite you to join us at 10:05 p.m. for our Western music program, All That Jazz, where we'll bring you some of the finest, some of the most soul-nourishing jazz tunes, from Oscar Peterson and Eric Dolphy to Frank Sinatra and Shirley Bassey and more. So looking forward to see you at 10:05 p.m. on our show, All That Jazz. Coming back to Hits and Memories, up next, we have Tom Petty and the Heartbreakers singing Free Falling.

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है।

0: यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: Welcome back, dear listeners, to Hits and Memories, only on Akashvani Rainbow 102.6 MHz. Last track we played was Oh Darling by the Beatles, one of Paul's most passionate performances of all time. And it is also one of those tracks which John Lennon himself hated. He said that Paul didn't sing well on that track and said that he could have sung better. Well, we'll never know. But with that, dear listeners, we have reached to the end of our musical journey on Hits and Memories. But don't go anywhere. We'll be back at 10:05 p.m. with our program, All That Jazz. Until then, here's your host, Shubhankar, signing off with one last track by the legendary Paul McCartney, the ultimate Beatles song and a generational anthem of hope. You already know what time it is. Here's Hey Jude by the Beatles.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम है म्यूजिक मस्ती और मैं हूँ आपके साथ नीरजा चतुर्वेदी। दोस्तों म्यूजिक मैं लेकर आई हूँ और मस्ती वो आप में और मुझ में भरपूर है, बस उसी का मजा लेंगे हम और आप मिलकर शाम को खूबसूरत बनाएंगे। तो हो जाए ताली पे ताली।

म्यूजिक मस्ती लेकर नीरजा हूँ आपके साथ और स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है 8:09 और ये शाम आपके नाम है बेहद ऐसे मजेदार गानों के साथ जो आपकी शाम को ऐसे म्यूजिक के रंग से भर देंगे कि आपको

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ लेकर म्यूजिक मस्ती, और बिल्कुल एक के बाद एक ऐसा तराना आएगा जो आपको धीमे धीमे उस जुनून की ओर ले जाएगा, जो आपकी शाम को बहुत खूबसूरत

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा चतुर्वेदी है आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, जहां ढेर सारा म्यूजिक है और दोस्तों इस तरह से है कि अगर आप चाहें कि आप स्लो नंबर पे डांस करना चाहते हैं तो वो भी आएगा, और अगर हैपनिंग नंबर चाहिए तो दोस्त वो भी आएगा, और अगर आप चाहते हैं टैप डांस करना तो वो भी होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आज सालसा कर लें तो बिल्कुल म्यूजिक मस्त मलंग है दोस्त आपके लिए। अरिजीत सिंह और विशाल मिश्रा की आवाज़ में ये ट्रैक, झूम लीजिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ, प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती और कोशिश सिर्फ यही कि आपकी शाम खास बनी रहे और अपनों अपनों के साथ यूं ही झूमते रहे आप। शिल्पा राव और सचेत टंडन की आवाज में ये ट्रैक आपके लिए।

और मोहल्ले को ये बता देना चाहिए कि FM रेनबो पर आज शाम और क्या क्या खास है। खास है भाई आपकी याद आती रही कार्यक्रम, जो 9 बजे शुरू हो जाएगा। ताहिर हसन हमारे साथ रहेंगे।

10 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 10:05 पर शुभांकर एक बार फिर से हमारे साथ होंगे ऑल दैट जैज वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम लेकर, और फिर 11:05 पर एक बार फिर ताहिर के साथ हम सुनेंगे रंगे महफिल। और फिलहाल मेरी महफिल में अभी बहुत कुछ है आपके लिए, आपसे मिलके ना लगता है मन लवली लवली हो गया।

आकाशवाणी रेनबो पर चलते चलते यही कहना चाहती हूँ कि आपकी शाम रहे अपने अपनों के साथ झूमती गुनगुनाती, और मैं लेना चाहती हूँ आपसे इजाज़त इसी वादे के साथ कि बहुत जल्दी फिर से आऊँगी। फिलहाल हॉली हॉली लेती हूँ इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार। सालसा कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप? ठीक रहेगा ना?

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, की हालचाल? हालचाल तो बढ़िया होंगे मुझे पता है, क्योंकि आप लोग रेनबो के साथ जुड़े जो है। कभी कभी भाई जी एक ही बात दिल में आती है, किसी का नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस एक मुस्कुराहट की वजह ही मिल जाती है कि हाँ वो हमारे साथ है, और पूरी शाम अच्छी लगने लगती है। नहीं, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जरूर बताइएगा। अजीब सी बात है ना, इंसान बहुत लोगों से मिलता है, मगर कुछ बातें, कुछ लहजे और कुछ फिक्र करने वाले अंदाज ही दिल ढूंढता रहता है, और उसे ही पसंद आ जाते हैं, और फिर बिना किसी वजह के शाम थोड़ी हसीन लगने लगती है। इसी खूबसूरत एहसास के नाम जो है आपकी याद आती रही प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं, आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और मैं हूं आपके साथ ताहिर। आइए कुछ गीतों को, कुछ मुस्कुराहटों को और कुछ दिल के करीब लम्हों को साथ में थोड़ा सा जीते हैं और थोड़ा सा हसीन बनाते हैं।

कभी कभी किसी की आदत भी बहुत अजीब होती है, वो सामने ना हो फिर भी उसकी कही हुई छोटी छोटी बातें दिन भर साथ चलती रहती हैं, यानी कि याद आती रहती हैं, और फिर यूं लगता है जैसे वो दूर होकर भी दूर नहीं है भाई साहब।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ ताहिर और प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रहे। जनाब कुछ लोगों का असर ही भी बहुत ही कमाल होता है, वो दो मिनट की बात कर लें तो पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है, और अगर खामोश रहें तो लगता है जैसे शाम ने भी थोड़ा कम बोलना शुरू कर दिया है, शाम हो ही नहीं रही। ऐसा होता है या सिर्फ ये किताबी बातें, बताइएगा।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक। हिमालय की गोद से लेकर
0: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, और मैं हूं आपके साथ ताहिर, और प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। याद का तो सवाल यही है कि कभी एक हंसी, एक नजर या एक सादा सा सवाल काफी होता है ये महसूस करने के लिए कि दुनिया में सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ है जो अच्छा भी है।

अजीब बात है जनाब, इंसान सब कुछ भूल सकता है मगर वो लम्हे नहीं जहां उसे बिना मांगे अहमियत मिल गई हो। और शायद इसीलिए कुछ चेहरे दिल में घर बना लेते हैं।

उनकी सादगी उनकी सबसे बड़ी अदा है, वरना हुस्न पर दुनिया यूं ही फिदा हो जाती है। ये हुस्न है, ये अदा है, ये नाज है, ये अंदाज, इंदा इंसान हो के फरिश्ता, कोई सोचता ही रह जाए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तो जनाब आज की शाम को अपने साथ जो कुछ लाई थी वो अब धीरे धीरे रात के हवाले करते हैं। कुछ बातें जो थी गीतों ने कह दी और आप तक पहुंच भी गई, जो शायद बिना कहे भी आपको समझ में आ गई होंगी। मैं हूं ताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, लेकिन ये सिलसिला यहीं रुकता नहीं। रात 11 बजे फिर रोशन होगी ये महफिल, जहां गजलें होंगी, कुछ नर्म सी अल्फाज होंगे और दिल की बातों को समझा वहां जाएगा। जी हां, मुलाकात होगी रंगे महफिल में। तब तक के लिए खुश रहिए, इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इसी गति, इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। साथियों, आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, सिर्फ यहां अटक नहीं जाती है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूवेस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर रहा। यह भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों को एक ऐतिहासिक दस्तावेज और एक सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस की एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेन के ड्रोन को नष्ट कर दिया। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों की उड़ानें रोक दी गई। मीनाक्षी हुड्डा चीन के विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नातालिया कुचेस्क्वा को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम वेलकम वेलकम एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। इट्स अ थर्सडे, सो यू नो व्हाट टाइम इट इज। इट्स योर टाइम टू रिटर्न टू द स्मूथेस्ट एंड द कूलेस्ट वर्चुअल जैज क्लब इन द वर्ल्ड ऑन आवर शो व्हिच इज कॉल्ड ऑल दैट जैज विद योर होस्ट Shubhankar, bringing you some of the finest jazz tunes of all time. You have been through a lot today. Work, stress, commute, heat, all of them have treated you very cruel today. So tonight, let's play cool, mellow, and a bit gentler jazz than usual. So, let's set the tone for this program with the great Oscar Peterson Trio asking you to hop aboard for the night train.

0: Listeners, it's time for another short break, but more beautiful jazz standards are waiting for you on the other side. So stick around. You're listening to All That Jazz only on Akashvani Rainbow 102.6 MHz.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: Welcome back, dear listeners, to All That Jazz, only on Akashvani Rainbow, 102.6 MHz. Dear listeners, if you're enjoying the show thus far, please feel free to show us some love by sending your WhatsApp messages to our official WhatsApp number, 98681-07070. I repeat, 98681-07070. Up next, we have the third singer performing for us on this night train of All That Jazz. We got the baby gum, Miss Show Business Judy Garland herself, singing Come Rain or Come Shine.

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: And with that, my dear listeners, we have finally reached to the end of our journey through the program All That Jazz. We wish this experience was enriching and you had a great time. Here's your host, Shubhankar, signing off from the show. We wish you blue skies and golden sunshine all along your way. So here's the last track of the night, No Blues by Wes Montgomery.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान

के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, आदर्स। रात का ये पहलू भी अजीब होता है भाई। दिन भर हम दुनिया से बातें करते रहते हैं और रात होते ही दिल अपनी बात सुनने लगता है। कुछ आवाजें वक्त के साथ धीमी पड़ जाती हैं, मगर कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो हर शाम नए लगते हैं। रात यूं ही दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में खोई हुई तेरी याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आई। मैं हूं ताहिर और आप सुन रहे हैं रंगे महफिल, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, दिल से दिल तक। आइए जनाब, इस रात को थोड़ा सा महसूस करते हैं कुछ गजलों के साथ, कुछ शेर व शायरी के साथ और कुछ उन बातों के साथ जो अक्सर दिल में ही रह जाती हैं। उसे बाहर निकालिए प्लीज़।

कभी कभी जनाब इंसान किसी कमी से ज्यादा उस सुकून को ढूंढता है जो उसकी मौजूदगी से मिला करता था। एक आवाज, एक आदत या एक छोटी सी फिक्र, यह सब चीजें वक्त के साथ खत्म नहीं होती, बस जिंदगी का गर्द उन पर जम जाता है और फिर किसी शाम कोई गजल, कोई मिसरा या कोई तन्हा लम्हा सब कुछ फिर से रोशन कर देता है। दिल ही तो है न संग किश्त दर्द से भर न आए तो क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। शायद इसीलिए कुछ रिश्ते टूट कर भी दिल से अलग नहीं होते हैं।

अजीब बात है जनाब, हम जिंदगी भर बहुत से लोगों से मिलते हैं, मगर कुछ लोग हमें जिंदगी से मिलवा देते हैं। उनके साथ गुजरने वाली वाले लम्हे वक्त के हिसाब से छोटे होते हैं, मगर एहसासों के हिसाब से बहुत गहरे। और फिर एक वक्त आता है जब उनका जिक्र भी मुस्कुराहट लाता है और खामोशी भी। कहते हैं ना, हर बार कहता हूं यही बात, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। मोहब्बत का शोर कम हो जाता है, मगर उसकी खुशबू देर तक रहती है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
7: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
8: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
7: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
8: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
9: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
11: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक, और मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रंगे महफिल। रात का एक अपना ही अदब होता है, ये जल्द में कोई फैसला नहीं करती। दिन भर हम दुनिया के साथ रहते हैं मगर रात में हमें हमसे मिलवा देती है। कुछ अफसोस, कुछ ख्वाहिशें, कुछ अधूरे खत और कुछ दुआएं, सब धीरे धीरे सामने बैठते हैं और फिर लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके एहसास होते हैं। कहते ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, और शायद इसी कमी का नाम जिंदगी है।

कभी कभी किसी से शिकायत नहीं होती, बस एक सवाल रह जाता है कि अगर सब कुछ इतना खूबसूरत था तो फिर इतनी जल्दी क्यों निकल गया, गुजर गया। मगर वक्त का भी अपना एक मिजाज होता है, वो कोई किसी के लिए रुकता नहीं। इसीलिए समझदार लोग शिकायतें कम कर देते हैं और दुआएं ज्यादा देते हैं। मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिला तो हाथ भी ना मिला। और फिर दिल को तसल्ली हो जाती है कि जो मिला था वो भी किसी रहमत से कम नहीं था।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रंगे महफिल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। और मैं हूँ आपके साथ ताहिर, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रंगे महफिल। आखिर में बात बस इतनी सी है कि हर आदमी के पास एक कहानी है जो वो सबको नहीं बताता। कुछ सफे आंसुओं के होते हैं, कुछ हंसी के, और कुछ उन लोगों के जिन्हें भूलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं। और फिर जब कोई गजल दिल के करीब से गुजरती है तो लगता है जैसे किसी ने हमारी खामोशी को अल्फाज दे दिए हों। रंज से गुजर कर इंसान तो मिट जाता है हर रंज, रंज से गुजर तो मिट जाता है हर रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। शायद इसीलिए गजलें सुनी नहीं जाती, उसके साथ चला जाता है। बहुत कुछ कह रही है ये गजल।

जनाब, बहरहाल ये वो वक्त है जब मुझे कहना होता है कि खुदा हाफिज, शब खैर। लेकिन थोड़ा सा दिल अजीब हो जाता है क्योंकि आपसे बिछड़ना होता है और इसी वादे के साथ बिछड़ना होता है कि हाँ, बहुत जल्दी आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। जब तक ख्याल रखिए, खास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। बाद में प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। आज क्वार्टर

फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:05:40 हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आया हूं मैं एसएम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम है जीरो आवर शो, तो आइए आनंद उठाते हैं इन प्यारे प्यारे गीतों का।

0: ये फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं, और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

एक घोड़ा सुना क्या लड़की बोला बात में बहुत दम है छाती ठोक ठोक के बोला।

हाथ टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हाथों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

जय हो राधेश्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है, ई है।

0: साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेस्का को 5-0 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05 और 35 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सुहानी रात।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: जिया जिया
0: कुछ कुछ
1: मैं छोड़ रहा।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की रात धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।

0: Stage I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात कर विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, हवाई अड्डा नेटवर्क और विश्वविद्यालयों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि मेट्रो कनेक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा है कि सुदृढ़ नीतिगत ढांचे और सरकार की नवोन्मेषी पहल से भारत विश्व के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा देशों में से एक बन गया है। नई दिल्ली में 10वीं हरित और सतत विकास साझेदारी परिचर्चा श्रृंखला में नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए ऊर्जा सुरक्षा पर अपने संबोधन में श्री सारंगी ने ये बात कही। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनके स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। इससे दोनों टीमों के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद अमेरिका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ग्रुप बी के मैच में भारतीय समयानुसार रात 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। उधर चीन के ग्वांगडोंग में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाते हुए भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग चीन को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
5: ठीक है।
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: 嗨嗨。
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: इससे पहले

मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले 12 वर्षो में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस आपसे प्यार करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और इसे बेहद सफल बताया। उन्होंने फरवरी में उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद भी जताई। श्री मैक्रों ने कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस साझेदारी का उद्देश्य देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले इलाकों में सरकारी खरीद अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान के साथ शांति समझौते लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। इससे दोनों टीमों के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। उधर चीन के गुआंगडोंग में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाते हुए भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग को हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद

मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्योन्मुखी तैयारी कर रहा है बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और लोकहित आधारित विकास के जरिए उसे सक्रिय रूप से संवार रहा है। श्री मोदी ने फ्रांस यात्रा के आखिरी कार्यक्रम में पेरिस में बोंजूर मोदी आयोजन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में पिछले

18 वर्षों में तेजी से हुए बदलावों का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और इसे बेहद सफल बताया। उन्होंने फरवरी में श्री मोदी से दोबारा मिलने की उम्मीद भी जताई। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सुविधा वाले इलाकों में सरकारी खरीद अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा चार राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाल और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खरीद की जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को पारगमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकाबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब हॉर्मूज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते पर बातचीत के लिए उनकी स्विट्जरलैंड जाने की योजना है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे ईरान के साथ शांति समझौता लागू करने में बातचीत का नेतृत्व करेंगे। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी आज ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। पेरिस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। उन्होंने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि एवियन में हुई G7 बैठक में उन्होंने विश्वास पर आधारित साझेदारियों के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व अनिश्चितता और व्यवधान के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में फ्रांस और भारत के बीच साझेदारी, विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में एक विदाई वीडियो पोस्ट में भेजा, जिसमें उन्होंने श्री मोदी को प्रिय मित्र बताते हुए कहा कि फ्रांस उनसे प्यार करता है। श्री मैक्रॉन ने प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की यात्रा को बेहद सफल बताया। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 3 मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों की आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने की सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमरीकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों के आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है, पर होर्मुज जल डमरू मध्य अभी ईरानी सेना की निगरानी और नियंत्रण में है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपकी वाणी आकाशवाणी। प्रातः के 5:05 और 37 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम आराधना।